में शामिल है, वो कौन है जो मेरी मंजिल है, वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ।

ना कभी ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है, वो जो भी है।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
3: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पहुंचा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार, उनसे समझ लो, जो रेड वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आप पहला रहा हूँ।
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
2: मैं कहाँ पर हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
2: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah.

0: वेल, अब ना रुके, चलने दे, बस यही मंत्र के साथ में हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी चाहिए होती है जब बात हो मंडे मॉर्निंग्स की, है ना। मीनवाइल चलिए जरा, मेरा तो वक्त हो गया है कि यहाँ पर अब आपको जरा वेदर का हालचाल सुनाऊं।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेदर की क्या ही बात करूं भाई, सूरज चाचा के दिन जो है कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं शुरू हो रहा है आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि यार कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ, पिछले 3-4 दिनों से, कि सुबह के वक्त जनरली इतनी ज्यादा गर्मी नहीं रहती और इतना ऊंचे इस पे नहीं रहता है सूरज, बट अभी हाल कुछ ऐसे ही चल रहा है। अगर बिल्कुल एग्जैक्टली मैं इसमें बताना चाहूँ, डिग्रीज में बताना चाहूँ, तो 45 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम है, 33 डिग्री सेल्सियस मिनिमम आज का वेदर रहने वाला है। हालांकि जो फील्स आपको है 45 से ज़्यादा ही रहेगी, थैंक्स टू द ह्यूमिडिटी, और हवाएं कुछ नई के बराबर ही चल रही है। फिलहाल तो 8 किलोमीटर पर आवर पर है, 63% पर ह्यूमिडिटी है, और बस यही उम्मीद कीजिए, उम्मीद नहीं बस यही तैयारी के साथ रहिए। इनफैक्ट आई कुड से कि ह्यूमिडिटी आज के दिन ज़्यादा रहने वाली है, आपने बस पानी पीते रहिएगा और सनस्क्रीन को अपना बिल्कुल बेस्टी बना दीजिए। इट इज मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट ट्रैक ऑफ द डे, सुबह होने ना दे मिका पाजी, और शेफाली की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, इट्स हॉट।

वेल यो हनी सिंह की आवाज पैराडॉक्स का साथ राइट रन मिर्ची और अगस्त का कैलेंडर तो एब्सोल्युटली फुल है बॉस. वेल मैं बात कर रही हूँ कतर में होने वाले इवेंट्स के बारे में एंड इट्स लाइक अक्रॉस कतर कुछ ना कुछ चल ही रहा है और चलना भी चाहिए भाई, बच्चों की छुट्टियां हैं, एंटरटेनमेंट जो है वो लगातार चलना चाहिए इनके लिए. वेल बात करते हैं द लाइनअप ऑफ दिस वाइब्रेंट मंथ ऑफ एंटरटेनमेंट जहां स्पोर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज के साथ में द कतर कैलेंडर रोल्स आउट डाइवर्स लाइनअप ऑफ इवेंट्स थ्रू आउट ऑगस्ट. जैसे बात करते हैं अबाउट समर कैंप्स जो बहुत सारी जगह चल रहे हैं. गो निंजा समर कैंप जो है गेट मॉल में है अंटिल 27th ऑफ ऑगस्ट जहां टेक्नोलॉजी क्रिएटिविटी एंड एडवेंचर थ्रू इंटरैक्टिव एक्टिविटीज हो रही है. द हैंगआउट एट द मुशर्रफ गैलरिया ये भी है 15th ऑफ ऑगस्ट तक ये चलेगा और यहां पर फैमिली के साथ जाकर रिलैक्स कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज भी है वहां करने के लिए बच्चों के लिए भी इनफैक्ट. और शॉपिंग और एंटरटेनमेंट तो चल ही रही है हाला समर मॉल एक्टिवेशन प्रोग्राम के चलते और ये अक्रॉस कतर इन ऑल शॉपिंग मॉल्स है, मोस्टली इन एवरी शॉपिंग मॉल ये चल रही है एंड ये भी पूरा महीना चलने वाली है. इतना ही नहीं कलर वर्स एक्सपीरियंस जो है कतारा में साउथ पार्किंग में है एग्जैक्टली ये 15th ऑफ सितंबर तक चलने वाला है. दिस इज वन प्लेस विच फील्स वेरी यूनिक टू मी जहां पर कुछ कलर्स रिलेटेड कुछ एक इमर्सिव एक्टिवेशन है एंड दिस इज वेयर आई थिंक सो इवन आई एम गोइंग टू विजिट. एंड इतना ही नहीं मोर देन 20 कंट्रीज से प्रोडक्ट्स जो है वो दोहा शॉपिंग सीजन ECC में यहाँ पर आपको मिल रहे हैं और ये भी जो है ये तो सिर्फ 5th अगस्त तक है, मतलब अब दो दिन बचे हैं तो वो भी आप जाकर देख सकते हो. एंड दैट्स नॉट इट, एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला तो और बहुत सारे लाइनअप है और वो जो भी है मैं थोड़ी ही देर में आपको बताऊंगी. राइट हियर ऑन दिस शो मिर्ची मॉर्निंग आफ्टरनून के साथ माइक से दिल तक अगला गाना वन ऑफ माई फेवरेट्स अमित त्रिवेदी की आवाज ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah, live in

0: अर्जुन आएंगे?
1: अरे करण, अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

देखिए, अगर मैं कहूँ कि आपके फोन में एक ऐसा फीचर पहले से मौजूद है जो कतर की सिक्योरिटी में आपका कंट्रीब्यूशन बना सकता है, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और मेट्रैश ऐप का ये फीचर डेफिनेटली कतर को बहुत ज्यादा सिक्योर रखने वाला है। एंड व्हाट इज दैट? देखिए, अगर आपको कोई सस्पिशियस व्हीकल, सस्पिशियस इंसान, कोई अजीब सी एक्टिविटी या कोई ऐसी जगह दिखे जो नॉर्मल ना लगे, तो सिर्फ देखकर इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अब मेट्रैश ऐप के थ्रू डायरेक्टली और कॉन्फिडेंशियली सीआईडी को इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। ना सर्विस सेंटर जाना है, ना अननेसेसरी पेपर वर्क। देखिए, लेकिन एक बात जो शायद सब नहीं जानते हैं वो है फॉल्स रिपोर्ट्स या अजम्पशन से बचना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। सस्पिशियस का मतलब डिफरेंट नहीं होता है। किसी को देखकर जज करना और किसी अनयूजुअल एक्टिविटी को रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, समझ लीजिए। दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल विजिलेंस एंड नॉट पैरानोइया। एक इंटरेस्टिंग थॉट ये भी आता है कि दुनिया के सेफेस्ट कंट्रीज सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉस की वजह से नहीं बनते हैं ना, वो बनते हैं जब अथॉरिटीज और पब्लिक के बीच कोलैबोरेटिव ट्रस्ट होता है, जब हर सिटीजन सोचता है दैट सिक्योरिटी जो है सिर्फ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी भी है। तो अगर कभी कोई जेन्युइनली कुछ अनयूजुअल लगे, मेट्रैश पर रिपोर्ट कीजिए, लेकिन फैक्ट्स के साथ, कामली और रिस्पॉन्सिबली। माइक से दिल तक आफरीन को आप सुन रहे हो राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
3: The elegance and this and that, everything inside is me is like a mad person. And I love mad comedies. And I love these kind of situations which are like larger than life. कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ, अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब, यू नो, सब पागल अनहिंज्ड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स।
2: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
5: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: association with Dairy Queen. Beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa John's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: Hello, Mirchi Helpline.
4: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है?
3: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
4: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

0: संजू यू आर सच अ क्यूटी यार, मतलब सिंपल से लिरिक्स, सिंपल सी आवाज, लेकिन फिर भी इट ऑलवेज फील्स मैजिकल। संजू राठौर की आवाज में ये गाना अभी आपने सुना, और अगला गाना जो सुना रही हूँ ना वो भी उन्हीं की आवाज में है। वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स यार, बोथ ऑफ देम आई लाइक इट। लेकिन उससे पहले मिर्ची घड़ी का इशारा किस तरफ है वो तो देख ले। मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 7:03। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

देखो शुक्र की बात है, ये जो स्पेकुलेशंस चल रही थी वो तो कहीं ना कहीं खत्म हो गई। Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को एंड देयर इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल द F1 फैंस। हाँ, ये बात तो सच है कि बहुत अनसर्टेनिटी थी, स्पेकुलेशंस चल रही थी कतर ग्रैंड प्री का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन फॉर्मूला 1 CEO स्टेफानो डोमेनिसली का फिलहाल इन्होंने कंफर्म कर दिया है दैट कतर 2026 का कैलेंडर जो बना हुआ है F1 के लिए, रेसेस के लिए, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहने वाला है। लेकिन एक बात बताओ, दिस इज नॉट ओनली द न्यूज, यहाँ द bigger picture is that Formula One सिर्फ एक sport नहीं है। As we all know, it's a global economic powerhouse actually. हर Grand Prix सिर्फ race नहीं लाता, बल्कि thousands of tourists, international media, luxury brands और millions of dollars की economic activity भी लेकर आता है। और कतर की race की एक और खास बात यह है that Lucelle International Circuit का night race, desert के बीच, flood lights के नीचे, F1 cars का 300 किलोमीटर पर आवर पर दौड़ना, उफ, इस विजुअल स्पेक्टैक्ट को दुनिया के बेस्ट नाइट रेसेस में काउंट किया जाता है, जानते हो आप। वेल, इंटरेस्टिंग ट्रिविया ये भी है कि F1 कैलेंडर में जगह बनाना एब्सोल्युटली आसान नहीं होता। हर साल मेनी कंट्रीज जो है, नई कंट्रीज इनफैक्ट, वो बिट करते हैं, कुछ रेसेस रोटेट भी होती हैं, इसलिए किसी रेस का कैलेंडर में टिकना सिर्फ प्रेस्टीज ही नहीं, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लॉलेस इवेंट एग्जीक्यूशन एंड ग्लोबल कॉन्फिडेंस। सो वेल, इफ यू आर अ मोटर स्पोर्ट फैन और अगर आप निराश थे कि हाई F1 होगा यहाँ नहीं होगा, तो बता दो भाई, सब कुछ जैसा डिसाइड किया गया है बिल्कुल वैसे ही चलने वाला है, तो लुसेल में रोर सुनने के लिए तैयार हो जाइए। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi. Escabana, poscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La viva la burga. Milchi, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello, Ben ji.
1: हाँ जी.
2: ये एक सेकंड. ये बहन जी, हम आपके पड़ोस में रहते हैं. ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है. वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है. अगर
1: आप... आपके घर में कोई नहीं है क्या?
2: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं. तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो. एक सेकंड बेटे, चुप.
1: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी.
2: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ. एक सेकंड. आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी. एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर. आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटे, चीजी लाएंगी. नहीं, चुप हो रहा. आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे.
1: नहीं, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है.
2: एक सेकंड, इधर आओ. हाँ, इधर आओ. देखो, मामा आ गई, चीजी लाई. हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका.
1: तो उतार लीजिए उसको.
2: एक सेकंड रुकिए. ये इसके गले में अटक रहा है डायपर. एक सेकंड.
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका.
2: अच्छा, ये बेब है. एक सेकंड,
1: देखिए सुसु करा होगा उसने. देखिए.
2: हाँ, सुसु ही करा. चल,
1: उतार दीजिए.
2: एक सेकंड. उतार दिया. मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा. देखो आंटी कर रही
1: है क्लैपिंग करो. चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए.
2: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है. नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं. रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया.
1: और मैं पागल हूँ. ओह नो.
2: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं. या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah. Live

वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और देखिए भाई, अब तो ऑलमोस्ट हमारा आधे साल से ज्यादा खत्म हो चुका है और जब रेस्ट ऑफ द ईयर बचा है, कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स हैं जो आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हो? जैसे शैल कथारा हंटिंग एंड फाल्कन एग्जीबिशन, ये सितंबर के महीने में होने वाला है और सितंबर के महीने में ही दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन होने वाला है। और जनरली ना ये वाले इवेंट है तो ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन, बॉलीवुड के कोई बड़ा स्टार आता ही आता है। करीना कपूर आ चुकी है, आलिया भट्ट आ चुके हैं, ऐश्वर्या राय है, इस बार देखते हैं कोई आता है या नहीं। उसके अलावा अगर बात करें बड़े बड़े इवेंट्स में हमारे कतर की, तो कतर बोट शो भी नवंबर में लाइंड अप है। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन इवेंट आई थिंक सो एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड इज शकीरा का कॉन्सर्ट। ये एक्चुअली स्टेडियम 974 में होने वाला है 18th of November को। एंड फॉर ऑल द स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट, भाई फुटबॉल के बगैर हमारा साल तो इनकम्प्लीट सा ही रहेगा, राइट? सो फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप वो भी होने वाला है नवंबर 19 से लेकर 13th of December तक। एंड देन F1 कतर एयरवेज ग्रैंड प्री ये भी तो होने वाला है नवंबर में। सो यू नो यार, बहुत सारी चीजें लाइंड अप है और दिसंबर के महीने तक तो मैं आई भी नहीं हूँ। कतर बलून फेस्टिवल वो भी होने वाला है, कतर T100 ट्रायल थॉन भी होने वाला है और दोहा फोरम 2026। सो ऑल यू आई कैन सी इज भाई, साल अब तक खत्म कहाँ हुआ है, अब तो यार शुरू ही हुआ है। इवेंट्स का सिलसिला तो यहाँ पर अब बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन अगला गाना आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah.

का स्वागत। कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलु हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान। खान, खान, खान, खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

0: बस मेरा भी यही सवाल पूछने का वक्त आ गया है. दैट डू यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन? Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड डू यू नो ये लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट में ये कौन सी मूवी से सीन है? बस वही खेलने आ गए हैं. और क्योंकि आज मंडे मॉर्निंग है और मुझे पता है आज ना दिमाग थोड़ा सा बंद सा हो जाता है, थोड़ा सा खोलने की जरूरत पड़ती है, इसलिए ज्यादा जोर नहीं देने वाली हूँ आज, बिल्कुल भी नहीं. इजी पीजी सा सवाल है मेरा ख्याल से, तो इसलिए सभी लोग रेडियो सच की वॉल्यूम बढ़ा दो और ध्यान से ये सीन सुनो.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट.
2: मैं हंसती नहीं हूँ, मुझे मुस्कुराना नहीं आता, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मुझे जीना नहीं आता.
3: ये सब सच है.
0: All right, that's it. आप सोचोगे यार आफरीन आज इतना छोटा सा डायलॉग क्यों? मेरे ख्याल से ये छोटा सा ही काफी पावरफुल डायलॉग है एंड बहुत ही जबरदस्त मूवी से है. आई एम नॉट गोना गिव एनी हिंट्स टुडे, प्रोबेबली डायलॉग फिर से सुना सकती हूँ.
2: मैं हंसती नहीं हूँ, मुझे मुस्कुराना नहीं आता, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मुझे जीना नहीं आता.
3: ये सब सच है.
2: I know.
0: Okay, do you know who is this? Movie का नाम बताइए. 5000-1896 is my number. WhatsApp number है ये मेरा. फटाफट से आपके जवाब का इंतजार है मुझे. और meanwhile आपको मैं जबरदस्त वाला गाना सुना रही हूँ मैं यहाँ पर हरनूर श्रेया घोषाल की आवाज में. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
2: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है. I think he is one of those people.
1: Tripti Dimri spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
3: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th September एट QNCC।
4: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
3: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: in association with Dairy Queen. Beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen and Papa John's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44, two medium pizzas at 66, two large pizzas at 99 Rial. Papa John's, better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
4: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
3: योर स्पेशल ऑफर?
4: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
3: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
4: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
3: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अखिल सचदेवा की आवाज में साथ देते हुए मनशील गुजराल और ये नए नए सिंगर्स कहाँ से नजर आ रहे भाई, मतलब आवाज तो अच्छी है लेकिन देखते हैं कहाँ तक ये जाते हैं। वेल, मैं हूँ आफरीन आपके साथ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इट्स अ मंडे मॉर्निंग और मंडे मॉर्निंग पर हम यहाँ पर ऐसा गेम खेल रहे हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा इजी पीजी सा है। आपके दिमाग पर बिल्कुल जोर नहीं डालने की कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि यार कुछ मूवी ऐसी है। लाइट्स कैमरा सीन्स भाई, अपना रोज वाला गेम। तो चलिए रेडियो सेट के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से आज का सीन सुनो।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: मैं हंसती नहीं हूँ, मुझे मुस्कुराना नहीं आता, मेरी कोई जिंदगी नहीं है, मुझे जीना नहीं आता।
3: नैना, ये सब सच है।
0: छोटा सा डायलॉग था लेकिन ऐसा डायलॉग जो मेरे ख्याल से ये मूवी हमें रटी हुई है, इतनी बार हमने देखी है एंड आई थिंक सो वन ऑफ आवर फेवरेट मूवीज, एटलीस्ट मेरी तो काफी फेवरेट मूवी है ये। लेकिन इसके बावजूद भी आप गलत जवाब दे रहे हो भाई। कुछ लोग यहाँ पर इसे कह रहे हैं कि आफरीन ये तो सलाम नमस्ते लग रही है। हाँ, ये बात तो सही है आपकी कि इसमें प्रीति जिंदा है, सैफ अली खान है, लेकिन ये सलाम नमस्ते नहीं है मेरे दोस्त, ये क्या है?
4: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग। हाँ जी अनवर,
4: फिल्म का डायलॉग है वेल होना हुआ।
0: ऑल राइट,
4: सैफ अली खान है, प्रीति
0: जिंदा, बिल्कुल सही, ये कल होना हो से है। और यहाँ पर बहुत से लोगों के मैसेजेस आए हैं, जैसे देव ने मैसेज किया है, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज आया है, देन आई हैव चार्ली सेइंग द राइट आंसर, नागेश इज आल्सो सेइंग द राइट आंसर, देन आई हैव अरफात सेइंग द राइट आंसर, एंड यस, और ये कौन है, मोहसिन का भी बिल्कुल सही जवाब है, दैट आफरीन ये है कल होना हो से। और कल होना हो का वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स कमिंग अप नेक्स्ट शान और अलका याग्निक की आवाज में। माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मिर्ची उठ।

0: बोल दामिनी बोल। बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: वो ना वो पराठे गरम करते वक्त मैं कितना भी ध्यान रखूं वो जल ही जाते हैं और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करती है, मैं क्या करूं?
0: क्या करूं का क्या मतलब है, जलने वाले तो जलेंगे, तू मम्मी को बोल के किचन में ना खड़ी रहे। सिंपल है।
2: खोपड़ी तोड़ खोपड़ी।

0: लई भारी गाना राइट हियर ऑन मिर्ची सजू राठौर की आवाज में और आपके साथ जुड़ गई है आपकी सिंपली आफरीन और वक्त हो रहा है मिर्ची घड़ी में 8:04
1: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: अच्छा कभी सोचा है कि आपका अगर कोई माइंड रीड कर ले तो मतलब एकदम सही सही आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बता दे। और यस मैं कोई साईफाई मूवी या फिर कोई वेब सीरीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल रियलिटी में बात कर रही हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे सिंपली आफरीन को और बिल्कुल हमारे कतर में ऐसे ही कुछ रियलिटी में जादू होने वाला है और वो कब क्या वही तो बताने आई हूँ मैं। यस वेरी फेमस मेंटलिस्ट सुहानी शाह हमारे कतर आने वाली है 25th of September और ये इवेंट हमारा मिर्ची आपका अपना मिर्ची लेकर आया है भाई। वेल चलिए बात करते हैं सुहानी शाह के बारे में। आई एम श्योर इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर आपने इतने सारे वीडियोज इनके देखे होंगे सलमान खान के साथ, आमिर खान के साथ, वे शी इज एब्सोल्युटली रीडिंग द माइंड। अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत लोगों को लगता है कि वो मैजिशियन है, बट नहीं, वो अपने आप को एक मेंटलिस्ट कहलाती है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ ट्रिक्स दिखाना नहीं उनका काम है बल्कि ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज और ह्यूमन बिहेवियर को इतनी डीपली ये समझती है कि आपको सच में लगेगा कि भाई ये कैसे कर रही है, भाई क्या, हाउ इज इट इवन पॉसिबल। बिलीव इट और नॉट, उन्होंने सिर्फ 7 साल की एज में स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। आज उनके नाम पर हजारों लाइव शोज हैं, दुनिया भर में सोल्ड आउट परफॉर्मेंसेस हैं और अब हमारे कतर भी वो लेकर आ रही है ये मैजिक। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से टिकट्स बुक करो क्योंकि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है हमारे कतर में, है ना, मतलब मिर्ची पहली बार ऐसा कुछ लेकर आया है एटलीस्ट। सो यू कैन नॉट मिस सुहानी शाह, दैट इज हैपनिंग लाइव इन कतर 25th of September और ये होने वाला है QNCC में। तब तक के लिए आप जो है फटाफट से जाइए SCT यानी सोनो सिटी से जाके अपनी टिकट्स बुक कर लीजिएगा। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga. Mirchi, murga.
2: हेलो,
3: हाय शिवानी.
2: हाय.
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर.
3: मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है. अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड. चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. हाँ? अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3. अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना. आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा. शिवानी शिवानी शिवानी, मेरी बात सुनो. प्लीज फोन मत काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं
3: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
7: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live.

अब 90s के गाने के साथ में जब दिन की शुरुआत होगी तो सोचिए आपका दिन कितना खूबसूरत जाएगा। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में 1942 अ लव स्टोरी से ये गाना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को 3rd of August आज की तारीख। और यस, यही तो असली वक्त होता है जब आपने आपके पैसे जो है सही इस्तेमाल करते हुए उसे अच्छे एक्सचेंज रेट पर अपने घर भेजने होते हैं। तो देखते हैं, चलिए आज का एक्सचेंज रेट क्या कहता है। देखिए, आज का आईपीएक एक्सचेंज रेट कहता है दैट 1 कचरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.16, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज 76.35। बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 33.95 पर है, वेयरएज श्रीलंकन रुपीज आपको मिल रहे हैं 92.09 और नेपाली रुपीज आपको मिल रहे हैं 41.70 पर। ये है आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, खुशियों का वन एंड ओनली फॉर्मूला 89.6 मिर्ची 1 पर। माइक से दिल तक आफरीन के साथ इट्स What?

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेन

0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa John's, enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44, two medium pizzas at 66, two large pizzas at 99 Rial. Papa John's, better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन्स हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, ई रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. TNC Supply.
4: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
5: Only on Mirchi. It's hot.
6: कुणाल खेमू, एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है. एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
7: मुझे एक्चुअली प्रॉब्लम है, आई डोंट रिमेम्बर माय ड्रीम्स. मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते. तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की.
6: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते. हर दिन की नई शुरुआत. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
4: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
5: Only on Mirchi, it's hot.
8: Dosti kai kusul hai madam. No sorry, no thank you.
9: Bhai saab, sorry and thank you. Hame dosti nahi, entertainment chahiye.
10: Toh Mirchi suno na, jahan entertainment khoob milega.
11: Khoob milega.
12: Qatar ka number one radio station.
13: 89.6 FM, Mirchi 1.
14: It's hot.

श्रेया घोषाल की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना रायचूर और मिर्ची और एकदम चकाचक सा गेम लेकर आई हूँ मैं। देखो जिंदगी में किसको सरप्राइजेस नहीं पसंद है, मतलब वो रेडियो पे सरप्राइज अगला गाना आने वाला भी आपके लिए कैसा होता है ना कि कौन सा गाना आएगा एंड सडनली वो अच्छा आपका फेवरेट वाला गाना होता है, सो इट इज अ प्लेजेंट सरप्राइज। और ऐसे ही इस वक्त पर मैं ऐसे मिर्ची का मेरे मिस्ट्री बॉक्स से एक सरप्राइज गेम लेकर आती हूँ कि अब आप सोचोगे आज आफरीन क्या लेकर आई है ऐसे ही कुछ, तो चलिए आज खोल के देखते हैं मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में एग्जैक्टली है क्या। Well, आज मिस्ट्री बॉक्स में है एक गाना या फिर आप कह सकते हैं एक अंतरा। अंतरा मेरे ख्याल से वही होता है ना जो गाने का बीच वाला पार्ट होता है, हाँ वही होता है। तो वो मैं बजाने वाली हूँ और आपने गेस करना है कि ये गाना कौन सा है, और ब्राउनी पॉइंट्स फॉर दोज जो गेस कर पाए कि ये मूवी कौन सी है, क्योंकि देखो गाना तो मुझे लगता है आप पहचान पाओगे लेकिन मूवी पहचानना थोड़ा मुश्किल है। सो यर इट गोज, रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाई और ध्यान से सुनो।

All right, that's it. कौन सा गाना था यार? ये वो वाला ऐसा कभी कभार होता है ना कि आपको पता है एंड जस्ट यू कांट गेट द लिरिक्स एट द राइट टाइम, और जिससे पहचान लिया भाई बॉस सल्यूट है आपको. 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर. फटाफट से इधर आके बताओ कि ये कौन से गाना ये है जो आप स्क्रीन सुना रही है. और मूवी तो बहुत कठिन है, ये तो मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, ये तो आपको आ ही नहीं सकता. अगर आ गया तो बॉस तो सीक्रेट हो. विद दिस अगला गाना जो सुना रही हूँ मैं, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स, शाहिद मलिया की आवाज, अमी विर्क का साथ, राइट रन विची. मैं हूँ आफरीन, माइक से दिल तक ऑन विची. इट्स हॉट.

0: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
1: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
0: The Mentalist Suhani Shah.

0: in association with Dairy Queen. Beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa John's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony. घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड. अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर. एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल. और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स. लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे. TNC अप्लाई.
3: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
4: और एड ब्रेक भी. मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
5: बार बार.
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

श्रेया घोषाल की आवाज और जुबिन नौटियाल का साथ राइट हियर ऑन मिर्ची आपके साथ जुड़ गई है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया मिले तो कितना मजा आ जावे, मतलब ऐसे कोई चैलेंजेस हो या फिर कुछ नए सरप्राइजेस हो। जैसे मैं यहाँ पर मेरे मिस्ट्री बॉक्स से एक नया गेम आपके लिए हर रोज लेकर आ रही हूँ। सो वेल, आज के मिस्ट्री बॉक्स में आपके लिए एक धुन थी, एक गाने के कुछ लाइंस थे और आपने गेस करना था कि ये गाना कौन सा है। और मैंने कहा कि अरे मूवी गेस कर लोगे तो और भी जबरदस्त बात है। सो आज कौन सा है, चलिए ये देखते हैं।

वेल, ये सेटिंग समझ में आई कि नहीं आपको कि भाई कौन सी मूवी से है, कौन सा गाना है? एंड आई वाज सो श्योर ना कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए तो मैंने ये पूछा भाई। बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो दबंग का है ना आफरीन। नहीं माय फ्रेंड्स, ये दबंग का नहीं है। लेकिन जिसने भी कहा, जैसे उमर ने, प्रिंसन ने, और फिर यहाँ पर इमरान ने, और लोगों ने कहा कि भाई आफरीन ये तो सुल्तान का गाना लग रहा है, 440 वोल्ट वाला, बिल्कुल वही गाना है ये मीका बाजी की आवाज़ में। कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू राइट ऑन मिर्ची, मैं हूँ आफरीन माइक से दिल तक। एंड आई लाइक दिस मूवी। सलमान खान कहाँ हो तुम? मतलब कितना अरसा हो गया कि तुमने कोई अच्छी मूवी देखी दी है हमें। मतलब मेरे ख्याल से लास्ट गुड मूवी वॉज आई थिंक सो सुल्तान ओनली। हाँ, बजरंगी भाईजान सुल्तान से पहले आई थी ना, ये कन्फ्यूजन है। बजरंगी पहले आई थी फिर सुल्तान आई थी, फिर न जाने इतनी सारी फ्लॉप पिक्चर्स आई हैं सलमान की, ट्यूबलाइट और आई डोंट नो व्हाट। आई थिंक सो पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड नाउ फॉर बैटल ऑफ गलवान, इफ आई एम राइट। सो मीनवाइल चलिए हम तो अगला गाना सुन लेते हैं।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है, मेरी टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Well, yet another a toxic movie. Like quite literally, इस movie का title ही toxic है जिसमें कियारा अडवाणी आपको नजर आएगी। Very good morning and welcome back. आप सुन रहे हो Simply Afreen को right here on Mirchi Mornings। और देखिए भाई, नई movies जो है Bollywood में, मेरे ख्याल से this year was fairly okay कि ऐसे कोई एकदम impact वाली, ज़्यादा impact वाली कोई movies Bollywood की आई नहीं। In fact जो आई थी, मुझे लगता है अभी तक मैं वापस आऊँगा Bollywood की, I think so this 2026 की one of the best movies है। मतलब काफ़ी साल से ये वाली movie मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी है। And उसके बाद upcoming movies की अगर बात करें तो मैनी पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इमरान हाशमी की आवारापन 2। यस, बनता है ना, बस मतलब इमरान भाई इतने टाइम के बाद आ रहे हैं और आवारापन वो भी ऐसी मूवी लेकर आ रहे हैं, तो बनता है, इंतजार तो बनता है। उसके अलावा कौन सी मूवी है जिसके लिए आपको शायद इंतजार करना चाहिए? मेरे ख्याल से अजय देवगन की दृश्यम 3। नाउ व्हेन यू थॉट के दृश्यम 1 में अच्छा सब खत्म तो हो गया, बता दो दिया, तो दृश्यम 2 आई। अब दृश्यम 2 में भी काफी कुछ ऐसा लगा कि अच्छा खत्म तो हो गया, अब आगे कैसे कहानी बढ़ेगी। तो देखो भाई, दृश्यम 3 लेकर आ रहे हैं तब पता चलेगा कि हाँ क्या ये क्या करना क्या चाह रहे हैं आखिरकार। हमें तो याद हो गया है 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर और गोवा और क्या क्या क्या क्या सीरीज था। बट यस, अगेन 2 अक्टूबर को ही रिलीज होने वाली है दृश्यम 3। एंड लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ द ईयर, हैज टू बी शाहरुख खान की मूवी किंग, जहां पर शाहरुख खान होने वाले हैं, दीपिका पादुकोण होने वाली है, एंड देन वी ऑल्सो हैव अभिषेक बच्चन, एंड इनफैक्ट शाहरुख की गुड़िया यानी सुहाना खान भी उसमें होने वाली है। सो यस, ये मेरे ख्याल से ये 3-4 मूवीज ही हैं जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है, ये साल में थोड़ा सा टेंशन शायद ये गाना करने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा है मुझे कि कोई है मूवी का एक खास जो हम कतर में देख सकते हैं। मीनवाइल मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है 9:05 की तरफ और अगला गाना वेलकम टू द जंगल का।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: Energy. Escabana, buscabana, sacabana. Grabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो
2: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
1: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
2: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
1: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
2: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
1: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
2: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
1: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, कैसे पैदल आ रहे हो?
2: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
1: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
2: एक तो समन है आपके नाम का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
1: नहीं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
2: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
1: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
2: आगे वो भी आगे हैं, आगे वो भी आगे। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
1: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
2: आगे वो भी आगे, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप ऊपर ला रहा हूँ,
1: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
2: किसकी डेथ हो गई सर?
1: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
2: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स का फार्म है, आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
1: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसे हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
2: मैं कहाँ पर हूँ,
1: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
2: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
1: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं। हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
2: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
1: यार।
2: थैंक यू
1: कुकुड़
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट। 4 balls लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
5: The mentalist Suhani Shah.

चौहान की आवाज एंड व्हाट अ सॉन्ग. चमकीला मूवी का ये गाना एंड इट हैड ऑल माय फेवरेट्स इन दिस मूवी. जहां दिलजीत पांजी थे, व्हाट एन एक्टर ही इज, या इम्तियाज अली थे, ए आर रहमान थे, और यही कॉम्बिनेशन हमने मैं वापस आऊंगा ये मूवी में भी देखी थी. एंड ये मूवी जब रिलीज हुई थी ना कतर में, कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते में मेरे ख्याल से ये चली भी गई थी थिएटर से. देन अगेन इट केम बैक इन थिएटर्स एंड दिस हैपेंड इन इंडिया एज वेल. के पिछला जो फर्स्ट एक हफ्ता कह सकते हैं इतना फ्लॉप रहा ये मूवी का, और उसके बाद में जिस तरह से ये मूवी ने पिकअप किया है जस्ट बाय द वर्ड ऑफ पब्लिक. और मैं भी ऐसी कहती रही रेडियो पर, जाओ जाओ देखो, ऐसी अच्छी मूवीज बार बार थिएटर में नहीं आती है, लेकिन कौन सुनता है. Hey, good morning and welcome back. Simply Afreen का साथ है, right here on Mirchi Mornings. और बस ऐसे ही बहुत सी बातें हम यहाँ पर करते हैं, बताती हूँ मैं आपको, ये देखो या फिर यहाँ घूमने जाइए. और ऐसे ही मुझे यहाँ पर मेरे लिसनर प्रिंसन ने बताया कि आफ्रीन यू सजेस्टेड मुसाफिर कैफे, और हमने पूरा वीकेंड डिबेट कर ये ही पूरा सीरीज देखा है. वेल, टॉकिंग अबाउट मुसाफिर कैफे, इट इज एक्चुअली ट्रेंडिंग. विक्रांत मासे की ये वेब सीरीज जो आई है, इट्स अबाउट अ लव ट्राइंगल, इट्स अबाउट नए चैलेंजेस इन लव. मेरे ख्याल से एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव जो है वो दिखाया गया है मुसाफिर कैफे में, और बहुत ही लाइट हार्टेड, और बस एक रोमांटिक फील है, लाइट हार्टेड है, कनेक्शन है, इमोशनल है. ये सारी चीज़ें ना आजकल की दुनिया में कहीं ना कहीं लैक कर रही है. आई एम सो डन विद द वायलेंस विच इज शोन ऑन OTT. अब OTT को इतनी लिबर्टी मिल गई है कि आप कोई भी लेवल का वायलेंस दिखा सकते हैं, एंड दे हैव क्रॉस्ड ऑल द लेवल्स. तो कोई भी अगर सीरीज और मूवीज उठाकर देख ले तो बहुत ही ए रेटेड कंटेंट आता है. एंड एट सच पॉइंट अगर मुसाफिर कैफे जैसे ऐसी सीरीज आती है, या फिर आदर्श बाल विद्यालय, और भी ज्यादा फैमिली फ्रेंडली. वैसे मैंने इसका एक एपिसोड देखा एंड आई जस्ट लव्ड इट. अमेज़न प्राइम पे वैसे ये स्ट्रीम हो रहा है. एंड ऐसे ही ना OTT रिकमेंडेशन मैं आए दिन यहाँ पर देते रहती हूँ, बहुत रिसर्च करके यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा देखो इसमें ऐसा है और उसमें वैसा है. मेरे तो फिलहाल दो पिक्स फॉर द वीक इज मुसाफिर कैफे एंड आदर्श बाल विद्यालय. इनमें से अगर दोनों में से भी कोई भी आपने शुरू किया हो या फिर कंप्लीट कर दिया हो, देन लेट मी नो. 5000196 इज माइन. Meanwhile, आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ. बादशाह और आस्था गिल की आवाज में, enjoy this track on Mirchi Hot.

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah live.

0: in association with Dairy Queen. Beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa John's. Enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony. घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
3: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
4: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
5: बहुत कुछ होगा।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: कभी ऐसा हुआ है कि दिल एक बात कह रहा हो और दिमाग दूसरी? मेरे ख्याल से ना हमारी ट्यूनिंग ही कुछ ऐसी की गई है कि ये दिल और दिमाग की ये जो ट्यूनिंग है, जो जोड़ी है, बिल्कुल हमेशा इतनी आसानी से ना एक साथ तालमेल नहीं करती। और इसी ख्याल पर आज मेरी शायरी है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी।
0: तो अर्ज किया है, ए दिल तू धड़क मगर इतना तो सोच जरा, ए दिल तू धड़क मगर इतना तो सोच जरा कि तेरे जज्बात और है और मेरे हालात और है।
2: दिल है के मानता नहीं।
0: वो क्या है ना कि दिल की एक खूबी है और एक कमी भी है। वो सिर्फ महसूस करता है, हिसाब नहीं लगाता है। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ मैं हूँ आफरीन, आपके साथ माइक से दिल तक, राइट रन विद शी, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
2: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, पहली मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी, क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हूँ, अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं पैसे देने की उनको नहीं आ रहे, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ, यू नो, मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, बट तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी।
1: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है, बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
4: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
3: द मेंटलिस्ट सुहानीशा।

यार मुझे लगता है ना ये गाना हम पर मतलब आप पर और मुझ पे सूट करता है। एग्जैक्टली तू जो है तो मैं हूँ यहाँ पर आपसे बातें करने के लिए क्योंकि आप मुझे सुन रहे हो ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफरीन के साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और हाँ जी मिर्ची वाले ना बड़े एक्साइटेड है, मतलब हमें ना चैन नहीं आता जब तक कि हम आपके लिए कोई एक से बढ़कर एक इवेंट लेकर नहीं आए और हमेशा ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। एंड दिस टाइम इट इज समथिंग रियली आउट ऑफ द बॉक्स एंड मैजिकल। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट आर अपकमिंग मेगा इवेंट एंड दैट इज सुहानी शाह लाइव इन कतर। वेल सुहानी शाह एक मेंटलिस्ट है, आपने देखा होगा काफी सारे इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर वीडियोस ऑफ दिस गर्ल हु एक्चुअली रीड्स द माइंड। और ऐसे ही नहीं भाई, बहुत सारे दिग्गज लोगों के इन्होंने माइंड रीड किए हैं। जैसे आपने सलमान खान का भी वीडियो देखा होगा इनके साथ में, फिर आमिर खान का वीडियो है एंड शी डज सम इनसेन स्टफ व्हिच विल एब्सोल्युटली लीव यू फ्लैबरगास्टेड। मतलब कैसे कर सकती है, बस यही सवाल आपके दिमाग में पूरा टाइम चलते रहेगा। एंड यू हैव टू एक्चुअली विटनेस दिस लाइव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो बस लाइव कब विटनेस करना है, 25th ऑफ सितंबर ये होने वाला है इवेंट QNCC में। और फटाफट से अब आज का दिन है जब हमारे टिकट्स हो गए हैं सेल करना शुरू एट स्नूनो सिटी यानी एस सिटी पर आपको जो मिलेगी टिकट्स फॉर सुहानी शाह लाइव इन कतर। मीनवाइल मैं हूँ यहाँ पर, हालांकि मेरा जाने का वक्त आ गया है लेकिन आज आपके साथ में जुड़ने वाली है आपकी मीठी मिर्ची अंशु। तो बस अंशु के साथ में थोड़ी सी गपशप करेंगे और फिर हम अलविदा लेंगे। चलिए फिर अंशु आपके लिए गाना ऑलरेडी यहाँ पर डिवाइन MC अल्ताफ की आवाज में और मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
2: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
1: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
3: साले को खोपड़ी तोड़, साले।

0: Hello?
1: Hello, Mr. Gotham.
0: कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
0: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
1: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
0: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगा.
1: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
0: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज.
1: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
0: कोंडा में कौन से गाने
1: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
0: सुन ले बात, मेरी बात सुन, पहले बात सुन.
1: हाँ सर.
0: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है ये बंद कर रहा
1: है. सर बोलिए.
0: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
1: जी सर.
0: और जिसने भी ये नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
2: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: मुनीत के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: देखो बात इतनी है कि नावेद ने आपकी जिंदगी में मुर्गा वाला तड़का तो लगा दिया, लेकिन अब बारी आ चुकी है कि मैं कुछ तो मिठास के साथ स्पाइस भी ला दूं।
2: मिर्ची अंशु
1: वेरी गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड यस इट फील सो गुड टू बी बैक। आरजे अंशु है आपके साथ, मजा आ गया यार। मतलब कुल मिलाकर 3 हफ्तों की जो दूरी रही आपकी और मेरी, उसे सहते सहते अब क्या बताऊं किस कदर आपकी याद आई कि मैंने डिसाइड किया नहीं यार अब तो लौटना है, जरूर लौटना है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आफरीन ने भी अपने वेकेशन में खूब मजे किए।
3: हाँ मतलब ये बहुत अच्छा रहा कि हम दोनों एकदम ऐसे फ्रेश होकर आए हैं अपनी एनर्जी को जो है वो रीसेट करके फिर से। एंड अंशु का रीसेट अच्छा खासा लग ही रहा है उसके चेहरे पर। वेरी नाइस अंशु, कैसी रही छुट्टियां?
1: बहुत अच्छी रही यार, आई वाज इन केरल पूरे 3 हफ्ते। इस बार मैंने केरल के 3 डिफरेंट सिटीज में बिताया।
3: अच्छा, पूरे 3 वीक्स यू वर देयर ओनली?
1: यस, द ट्रिप बिगन विद मल्लापुरम के बाद अगर मैं कहीं पहुंची तो दैट वाज त्रिवेंद्रम, एंड त्रिवेंद्रम के बाद इट वाज एर्नाकुलम यानी कि कोचीन। तो बहुत सारे नए टर्म्स एंड
3: टर्मिनोलॉजीज।
1: पता है क्या मतलब ना, 3 जगह मुझे 3 डिफरेंट बिहेवियर्स मिले। मतलब अच्छा। पता चला कि मौसम जो है इंसान से कम नहीं होता। अगर मंजेरी की बात करूं, जैसे कि पहली जगह मल्लापुरम, इट वाज माइल्ड, आई मीन ना ज्यादा बारिश ना ज्यादा गर्मी। त्रिवेंद्रम में तो ऐसा लगा कि भैया कतर की गर्मी को टक्कर देने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो है त्रिवेंद्रम। बट कोचीन पहुंचते ही रियलाइज हुआ कि धुआंधार बारिश होती ना, वो कहते हैं तो किसे कहते हैं। कुल मिलाकर बारिश का एक्चुअल मजा अगर मैंने कहीं उठाया तो वो है कोचीन।
3: लड़की बारिश इंजॉय कर,
1: बिल्कुल यार
3: क्या बात है। तो बस बारिश वाला गाना भी हो जाए।
1: हाँ यार मतलब ये अरिजीत सिंह है, इश्क प्यार मोहब्बत के साथ किसी की याद आपको जरूर दिलाएंगे। किसकी याद आई स्कूल कॉलेज टाइम से बताना जरूर ना। 5000 1896 लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्टिंग विद यू
3: अंशु वंस अगेन।
1: थैंक यू आफरीन। मीनवाइल ये अगला गाना अब तक एंजॉय, बंदी का नाम अंशु।

0: इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: इट्स ऑल डाउन टू धोनी, इजंट इट? 4 बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah.

0: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
1: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
2: दोनों मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
3: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: अरिजीत सिंह निकिता गांधी की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फीचरिंग कियारा आडवाणी एंड ऋतिक रोशन फ्रॉम द फिल्म वॉर 2। भाई गाना जो है बड़ा कमाल है। आने जाने की बात करें तो ये सिलसिला अब आपकी जिंदगी में शुरू हो ही चुका है, लेकिन कैसे? अरे अच्छा वक्त जो आ चला है, मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:23।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: देखो भाई एक बात बता दूं।

0: ये जो हैं जरूर आ रही हैं, लेकिन आपको इस वक्त बेहद सतर्क रहने की जरूरत है।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे मैं अपनी बात कहाँ ही कर रही यार, मुझसे सतर्कता बरतोगे तो आखिरकार कहाँ ही जाओगे। एंड इट फील्स सो गुड टू बी बैक, आरजे अंशु है आपके साथ। वेल इस वक्त अगर कतर में आने की बात करें, दस्तक देने की बात करें, तो एक ऐसी शख्सियत आ रही है जिससे आपको नहीं आपकी बीवी को जरा सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए बात इतनी है कि अगर हम सारे के सारे मेल जेंडर की बात करें तो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बस यही होता है कि ये समझ जाए कि मेरी बीवी के दिमाग में चल रहा है तो क्या चल रहा है। मतलब ये एक ऐसी गुत्थी है जो शायद ही दुनिया में किसी की में ताकत हो, काबिलियत हो जिसे सुलझा सके। लेकिन हाँ, कोई तो है जो इस वक्त आ रही है जो आपकी समस्या का जरूर समाधान लेकर आएंगी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कतर समवन हु इज गोना बी परफॉर्मिंग इन एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनर। ये तालियां जो है धूमधाम से बजती रहनी चाहिए क्योंकि मैं बात कर रही हूं द मेंटलिस्ट सुहानी शाह। बिल्कुल ठीक सुना आपने, 25th ऑफ सितंबर वो तारीख होगी जब फाइनली सुहानी शाह का इवेंट आप कतर में लाइव विटनेस कर पाएंगे। स्नूनू सिटी में जाकर आप अपनी टिकट्स जो है फटाफट से बुक कर सकते हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स इस वक्त जरूर चल रहे हैं जिसे आपने हथियाना है, 101% जल्दी हथियाना है। एंड इसके अलावा एक और खास बात अगर आपको बताने की कोशिश करूं, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में जहां आपकी समस्या का समाधान होगा, वहीं दूसरी तरफ जरा तुम भी बच के रहना। अगर तुम्हारी बीवी इनके हाथ आ गई ना सुहानी के, और दो महिला जब मिल गई, तो समझ सकते हो कि तुम्हारे दिमाग का एक एक खाना खोला जाएगा। और किस तरह से खोला जाएगा, ये दिल का रास्ता समझ में आ ही जाएगा। चलिए जी, वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड एंड वी आर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू ऑल फॉर सुहानी शाह लाइव इन कतर। बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, डिटेल्स हैं, 5001896 दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतर या मिर्ची अंशु। मीनवाइल अरिजीत सिंह की आवाज सुनिधि चौहान का साथ, एंड ये अगला प्यारा सा ब्रांड न्यू ट्रैक, एंजॉय, बिंदी का नाम अंशु।

0: फ्रेश माल।
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah live.

0: creation with Dairy Queen. Beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen and Papa John's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44, two medium pizzas at 66, two large pizzas at 99 Rial. Papa John's, better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Well, Vishal Mishra ki khubsurat si awaaz, film ka naam Bad News, and this lovely track featuring Vicky Kaushal and Tripti Dimri. Dekhiye, ye to maine aapko suna diya, dikhaya nahi, lekin ek kaam karte hain, kuch khaas hai jise dekhne ki taiyari aapko zarur karni hai.
1: Mirchi Anshu.
0: भाई देखो, सबसे खास और गजब बात तो बस यही है, किसी चीज को आप जिंदगी में काबू कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इसे काबू कर पाना ये मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वक्त, यानी कि टाइम. वेल, दिस इज आरजे अंशु विद यू. एंड सच कहूँ यार, बड़ा अच्छा लग रहा है. मतलब कुल मिलाकर तीन हफ्तों तक आप सब से दूर रहने के बाद एक बार फिर से आपकी ज़िंदगी में शामिल होकर बड़ा मज़ा आ रहा है. लेकिन पता है, और भी ज़्यादा कब अच्छा लगता है? जब आप नहीं हो, आप फिज़िकली प्रेजेंट नहीं हैं, एंड उस वक्त आपको कोई एहसास दिलाए कि यार आपकी कमी जो है वो महसूस हो रही है, ज़रूर हो रही है. तो कुछ मैसेजेस आए, एंड उन मैसेजेस में जितना भी वो प्यार था, वो जितने भी वो मिस यू वाले वर्ड्स थे, ये कहीं ना कहीं दिल पे ना ज़रूर घर गए. लेकिन यार, इस बार की छुट्टी पे ना मैंने एक बात ज़रूर सीखी है कि हम जो है ना अक्सर इन बातों में खोए रहते हैं कि आने वाले दिनों में लाइफ में क्या करना है. बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे प्रोसेसेस, एंड ज़रूरी है फ्यूचर को सिक्योर करना, आने वाले वक्त के बारे में सोच के चलना, ये ज़रूरी है. लेकिन यार, इन सभी बातों के बीच जो पल आज हाथ में मिला है भाई, उसे गंवा देना ये कहाँ तक सही है. तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, वक्त एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कभी काबू में नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, इस चलते हुए बीतते वक्त के साथ कुछ अच्छी मेमोरीज हम ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं, जो आने वाले दिनों के लिए भी खास बने, एंड आज को और भी खूबसूरत करती रहे. तो बस उन पलों को जीते चलें, मेमोरीज को अपने काबू में करें, एंड फिर तो क्या यार, जब फ्यूचर आपका ब्राइट होगा, सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा होगा, हम एक बात ज़रूर कहेंगे, हाँ जी, कहीं ना कहीं जो है आपके इस ब्राइट फ्यूचर का हिस्सा हम रहें, ये बात आप कभी भूलना नहीं. जावेद अली की प्यारी सी आवाज, एक अगला प्यारा सा आपको गाना सुनाते हैं. मीनवाइल कुछ देर में होंगी और भी बातें. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: Amit Trivedi, studio hai, guitar hai, mahol hai. Ruke kis liye aap?
2: होने दो बतिया, होने दो बतिया, सीने में दिल, sorry, one more take please.
1: Take as many takes as you want, Amit Trivedi. हम तो सुनते रहेंगे. मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood bol dal, Bollywood, Bollywood, Bollywood bol dal. Only on Mirchi, it's hot.
3: Hello shops. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit नहीं हो रहा है. मैंने बाबा जी से advice ली तो कहते हैं
4: office के toilet में toilet paper white नहीं yellow लगाओ, profit आएगा.
3: Relative से advice लो तो कहते हैं
5: काम को time दो, 25 घंटे काम करो, dark circles होंगे तो future bright होगा.
3: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ promotion fund के लिए, जिसके लिए आप 50% equity ले सकते हो.
6: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है. गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट.
7: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ. कॉल नाउ 7070 7687.

0: जोश प्रार एंड परम्परा टंडन की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म बागी 4। देखो फिल्म का मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं पता लेकिन एक बात गारंटीड है कि यार ये गाना जो है ना बड़ा कमाल, एंड कुमार के शब्द को अगर आप महसूस करने की कोशिश करेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि गाना मैजिकल सिर्फ और सिर्फ अच्छे म्यूजिक या तो फिर मैं कहूँ अच्छे सिंगर्स की वजह से नहीं, कहीं ना कहीं अल्फाज कुछ इस तरह का कमाल करते हैं कि आपके दिल पे 101% उतर ही जाते हैं। चलिए जी, ये प्यारा सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन तारीख पे तारीख, ये डायलॉग नहीं, कोई तारीख यानी कि डेट है जो याद दिला दूं।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखिए बात इतनी है कि जो शब्द डेट है ना हमारी जिंदगी में बड़ा कमाल का रोल प्ले करता है। आज अंशु एक बार फिर से आ गई इसके सारे के सारे मायने एंड अहमियत को आपकी जिंदगी में समझाने के लिए। अब जरा देखें, अगर मैं डेट की बात करूं तो बचपन के दिनों में सबसे पहले अगर कोई बात याद आती है तो बस यही कि भैया एग्जाम की डेट एंड उसका खौफ। अब कहें तो क्या ही कहें, लेकिन हाँ यार अपना बर्थडे जो है वाली डेट जो है लाइफ में हमेशा कमाल लगी है। एंड उसके बाद अगर सेकेंड डेट की मैं बात करूं तो नया नया वो जो इश्क प्यार मोहब्बत का सिलसिला हमारी जिंदगी में शुरू हुआ था अपने पहले पहले क्रश के साथ जो डेट पे गए थे, हाय वो वाला डेट भी जो है ना लाइफ में काफी कमाल और अच्छा लगा था। लेकिन इसके अलावा अगर और डेट की बात करूं तो भैया आज की डेट में ये आपकी जिंदगी में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, कुछ करे या ना करे। लेकिन हाँ अपनी वेडिंग डेट जो है वो भूलने की गलती जो है ना आप कभी ना करें। लेकिन एक ऐसा डेट जो जेन्युइनली आपकी जिंदगी में तंदुरुस्ती लाने का भरपूर काम करता है तो वो है डेट यानी कि खजूर। ओ हुजूर, एक बार फिर से लोकल डेट्स एग्जीबिशन की बात करें तो इसकी बाहर जो है हमारी जिंदगी में आ चुकी है। अगर सीधा आपको कहीं पहुंचना है तो वह सुख वाकिफ उसका ईस्टर्न स्क्वायर, जहां पे पूरे तंबू जो है ना सॉलिड तरह से लगाए गए हैं, फुल्ली एयर कंडीशन वो वेन्यू है, एंड लोकल डेट्स की ढेर सारी वैरायटीज आपको जरूर मिलेगी। एंड सच कहूं लोकल डेट्स जो है ना यार इनके टेस्ट जो है काफी कमाल है, अब तक का सबसे बड़ा एग्जीबिशन आप विटनेस कर पाएंगे जहां पे ना ही सिर्फ आपको डेट्स मिलेंगे बल्कि उसके अलावा डेट्स से बनी हुई बहुत सारी वैरायटीज भी, डिशेस भी आप एंजॉय कर पाएंगे। तो 10th of August वाली ये डेट आपकी लाइफ से निकले उससे पहले आप जाएं डेट्स एग्जीबिशन एंजॉय करके आएं। अलका याग्निक एंड अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज, एक बहुत ही प्यारा सा गाना फ्रॉम द फिल्म तमाशा, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: वलेर रहमान एंड चिन्मई की खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ फ्रॉम द फिल्म गुरु, एंड क्या कमाल लगे यार, चाहे मैं अभिषेक बच्चन की बात करूं, ऐश्वर्या राय की बात करूं। लेकिन चलिए इससे पहले कि मैं आगे बढूं, आपको ना इस गाने की मैं बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी हिस्ट्री बताती हूं। देखिए, सबसे पहली बात, इस गाने को कंपोज खुद ए रहमान साहब ने कहा, लेकिन इससे अगर किसी ने लिखा तो वो है गुलजार साहब। लेकिन ये जो गाना है ये रहमान साहब के लिए बहुत खास, बहुत स्पेशल था। द रीज़न बीइंग ही डेडिकेटेड दिस सॉन्ग टू द मेमोरी ऑफ द लेजेंडरी कव्वाली माइस्ट्रो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नुसरत फतेह अली खान साहब। उनकी 10th एनिवर्सरी ऑफ हिज पासिंग, इस ओकेजन में ये गाना ना ही सिर्फ ए आर रहमान साहब ने डेडिकेट किया बल्कि उन्हीं के अंदाज में इसे पूरी तरह से कंपाइल करने की कोशिश की। चलिए जी, ये प्यारा सा गाना भी आपको सुनाया एंड इसकी कहानी भी बताई, लेकिन किसने?
1: मिर्ची अंशु।
0: वैसे इस वक्त अगर कहानी की मैं बात करूँ, एक नई दास्तान लिखने की बात करूँ, तो भारत की इस बच्ची ने ये काम जो है वो ज़रूर कर लिया है। देखिए यार, बात इतनी कि अगर आप स्पोर्ट्स जगत को देखने की कोशिश करें तो ग्रेजुअली जिस तरह के खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं, देश का नाम जो है दुनिया में पूरी तरह से रोशन कर रहे हैं। एंड वहीं अगर मैं बैडमिंटन की बात करूं, अगर फीमेल्स की बात करें, यू नो, गर्ल्स के सेक्शन को देखने की कोशिश करें, तो यार साल 2008 में साइना नेहवाल ने इतिहास रचा था जब ताइपे ओपन में देश की एकमात्र महिला एकल चैंपियन ये बनी। लेकिन उसके बाद से दो दशक तक पूरी तरह से भारत का नाम जो है इस ओपन चैंपियनशिप में पूरी तरह से सूखा रहा। एंड अब जो है यहाँ पे बारिश कुछ इस तरह की हुई कि तन्वी शर्मा ने ये पूरी तरह से कंफर्म किया कि इस लिस्ट में फाइनली एक और नाम जो है वो जुड़ जाए। उन्होंने वियतनाम की थुई लिन ग्वेन को 21-16 से हराकर अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब जो है वो जीत लिया। एंड ये बात दुनिया को बता दी कि फ्यूचर जो है बैडमिंटन का भारत के लिए बहुत ही ब्राइट है। ताले हो जाएं यार। वेल, तन्वी शर्मा जो है पूरी तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी, जब भी कोई एथलीट आगे बढ़ता है ना यार, उसके पीछे उसकी मेहनत है, उसके पीछे उसकी कोशिश है, वो डेडिकेशन है, वो डिटर्मिनेशन है। लेकिन अगर सबसे बड़ा हाथ और किसी का होता है तो उन कोचेस का होता है, उन टीचर्स का होता है, जो शायद फिजिकली कभी सामने नहीं आ पाते, उनका नाम जो है अखबारों में कभी छपता नहीं, लेकिन भाई एक सही कोच के बिना ना कोई भी एथलीट अपनी मंजिल, अपने मुकाम तक पहुँच नहीं सकता। एंड उसके अलावा अगर साइलेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, मैं सैक्रीफाइसेस नहीं करूँगी, क्योंकि कोई भी माँ बाप जो है ना अपने बच्चे के लिए कोई सैक्रीफाइस नहीं करते, उसे बनाने के लिए वो कॉन्ट्रीब्यूट ज़रूर करते हैं। ये दोनों शब्दों में ना बड़ा डिफरेंस है। एंड पेरेंट्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जिंदगी में, उसे कभी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक माँ बाप का सपोर्ट ना हो ना, कोई कितना भी अच्छा खिलाड़ी क्यों ना हो, वो जिंदगी में आगे बढ़ पाए ये थोड़ा मुश्किल जो है ना जरूर होता है। चलिए जी, भारत का फ्यूचर बैडमिंटन के लिए ब्राइट है, ये बात जो है पूरी तरह से नजर आ चुकी है। अब एक काम करते हैं, आपको संजू राठौड़ की आवाज में अगला प्यारा सा गाना जो है सुनाई देते हैं। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो बहन जी।
1: हाँ जी,
0: ये एक सेकंड, ये बहन जी, अब आपके पड़ोस में रहते हैं, ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है, वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
1: आप... आपके घर में कोई नहीं है?
0: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं, तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो। एक सेकंड बेटे, चुप।
1: आप अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए जल्दी।
0: नहीं नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ। एक सेकंड, आली है, मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर, आएंगी मामा आएंगी, चीजी लाएंगी बेटे, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
1: नहीं नहीं, हाँ, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है?
0: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ इधर आओ, देखो, मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
1: तो उतार लीजिए उसको।
0: एक सेकंड रुकिए, ये इसके गले में अटक रहा है डायपर। एक सेकंड,
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
0: अच्छा, ये बेब है। एक सेकंड,
1: देखिए सुसु करा होगा उसने, देखिए।
0: हाँ, सुसु करा। चल,
1: उतार दीजिए, एक सेकंड,
0: उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ जाए जरा। देखो आंटी कर रही
1: है,
0: क्लैपिंग करो। हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं, रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
1: और मैं पागल हूँ। ओह नो।
0: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.
3: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
7: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoo Noo. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah.

0: in association with Dairy Queen. Beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa Don's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa Don's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. जा बेटा जा।
4: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट
2: मिर्ची फ्रेश माल।
6: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.

0: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
1: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
2: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Well, Udit Narayan and Alka Yagni ki khubsurat si awaaz, and what a lovely track it is, yaar. Kya khubsurat pyara sa gana from the film Josh, jo ki release hui thi saal 2000 mein. And kisne socha tha ki on screen Aishwarya Rai and Shahrukh Khan aapko kabhi bhai behan ke taur pe nazar aayenge. Lekin is film mein aur khaas kar is gaane mein yaar Aishwarya ke saath ye jo Chandrachur Singh ji hai na bhai kya kamaal lage. I just loved it. Chaliye ji, ye pyara sa gana to maine aapko suna diya, lekin right now aapki zindagi mein khushiyon ki bahar lane ki koshish ek bar phir se kar lu.
1: मिर्ची अंशु
0: यार ये जो ह्यूमन माइंड है ना, ये बड़ा कमाल है. मतलब मैं इससे पहले की कुछ कहूँ, बचपन की एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया करता था ना, खुशी होती थी. खुशी तब होती थी जब ये बात पता चल जाए कि नंबर जो है काफ़ी अच्छे आए हैं. लेकिन इस खुशी को इंस्टेंटली गम में या ज़रा कम खुशी में बदलने में वक्त तब नहीं लगता था जब ये बात समझ में आए कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को तुमसे ज़्यादा मार्क्स मिले. नहीं, ऐसा कुछ हुआ है? चाहे हम अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी क्यों ना न्यौछावर कर दें, लेकिन एग्ज़ाम के रिजल्ट के वक्त ये पूरा का पूरा मोमेंट जो है ना 101% चेंज हुआ करता था. नहीं, मेरे साथ तो ऐसा जरूर होता था. आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? पर आज अंशु है आपके साथ. चलिए, इस वक्त खुशी में इंक्रीमेंट कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर अभी तक तुमने अपने पैसे बचा के रखे हुए हैं, ट्रांसफर नहीं किए हैं, तो भैया खुशी आएंगी, जरूर आएंगी. Well, अगर आज के पैसों को देखने की कोशिश करें तो वन रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.09, वेल पाकिस्तानी रुपीज 76.35, नेपाली रुपीज 41.61, बांग्लादेशी टाका 33.96 एंड इसके साथ ही लंगन रुपीज 92.09. तो भाई, जिन्होंने कम एक्सचेंज रेट में पैसे भेजे तुम्हारे जानने वालों में से है, तसली दिल को ये बात दे के कर लो कि मैंने अभी तक पैसे बचा के रखे हैं, एक्सचेंज रेट जो है जरा अच्छा उछला. चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ. मीनवाइल एक्सचेंज रेट is brought to you by

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
2: The elegance and this and that, everything inside is me is like a mad person. And I love mad comedies. And I love these kind of situations which are like larger than life. कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ, अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब, यू नो, सब पागल अनहिंज्ड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स।
1: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्ड बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
4: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoonu, बुक योर्स नाउ।
5: In association with Dairy Queen, beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa John's, enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44, two medium pizzas at 66, two large pizzas at 99 Rial. Papa John's, better ingredients, better pizza.
6: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
7: Visual media partner, Rehab Media.
8: Production partner, Symphony.

Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: परंपरा टंडन की एक खूबसूरत सी आवाज़ एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज़ यार, क्या खूबसूरत सा गाना। सच कह रही हूँ, फिल्म दो पत्ती का अगर सबसे खूबसूरत पार्ट अगर कुछ है तो वो है ये गाना और इसके अल्फाज।
1: मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु, मिर्ची अंशु।
0: भाई जब भी ना मैं ये टंडन जोड़े को देखती हूँ ना, यानी कि सचेत परंपरा को, मुझे ऐसा लगता है ये वन मैन शो किसे कहते हैं ना, ये बात ये दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भैया गाना जो है हम ही गाएंगे, कंपोज जो है हम भी करेंगे। कई बार तो लिरिक्स भी ये खुद लिखते हैं, लेकिन अगर इस गाने के लिरिक्स की बात करूँ तो उसे बहुत खूबसूरत तरह से अगर किसी ने शब्दों में पिरोया है तो वो है कौसर मुनीर। एंड अगर कौसर मुनीर के वन ऑफ द मोस्ट हार्टफेल्ट कंटेम्प्रेरी लिरिक्स की आप बात करें तो उनमें से ये गाना जो है ना टॉप में आता है बॉस। बढ़िया है जी। चलिए अब टॉप क्लास एक्सपीरियंस देने के लिए मिर्ची की टीम जो है पूरी तरह से आपके साथ तैयार है। अंशु एक बार फिर से आपकी जिंदगी में आ चुकी है एंड आपको ये बताना चाहेगी कि जो काम जिंदगी में कोई और ना कर पाया वो काम ये बंदी जरूर करेगी। नहीं मैं नहीं। इतनी मेहनत जो ना मुझसे ना होती, अपना दिमाग ना पढ़ पाई, किसी और का मैं क्या ही पढ़ूं। वेल आई एम टॉकिंग अबाउट सुहानी शाह। भारत के अगर टॉप मोस्ट मेंटलिस्ट की बात करें तो इस बंदी का नाम उसमें जरूर आता है। एंड अब आप सभी के दिमाग के खाने को खोलने के लिए ये जो है कतर आने वाली है 25 सितंबर। 25th of September इज व्हेन यू गोना बी विटनेसिंग लाइव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दोहा सुहानी शाह एंड वी कुडंट बी मोर एक्साइटेड। तो सुहानी का ये जादू अगर आपको लाइव विटनेस करना है, तुम्हारी बीवी के दिमाग में तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है ये बिल्कुल चुपचाप जानना है, इसके अलावा कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, बॉस के क्या इरादे, ये सब कुछ पता करना है, खुद को खुद से ज्यादा जानना पहचानना है, तो उसकी तैयारी आप कर लीजिए यार। स्नोनू सिटी में जाकर, एस सिटी में जाकर बिल्कुल आप टिकट्स बुक कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो है अभी चल रहा है, जल्दी जल्दी जाओ इससे पहले कि तुम्हारे पैसे बचने की बारी जो है ना वो खत्म हो जाए। बाकी कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में आप और हम मिलकर आपको और खुद को और हमको ज्यादा बेहतर तरह से समझेंगे सुहानी शाह के साथ। संजू राठौड़ की आवाज फिलहाल ये अगला गाना एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Na vjet bala burga. Mirci, burga.
1: हेलो।
2: हाय शिवानी।
1: हाय।
2: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
1: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
2: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
1: समाचार?
2: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
1: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
2: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
1: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
2: अच्छा।
1: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
2: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
1: फेवर,
2: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
2: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
2: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
2: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
2: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
2: शिवानी।
1: हेलो,
2: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
2: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना, शिवानी मेरी बात सुनो। बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? स्मार्ट चॉइस है ओरिरू मनी कार्ड, अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल, और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरू मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left, they need 12 runs to win.
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
8: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
4: The mentalist Suhani Shah, live in

0: उदित नारायण की खूबसूरत सी आवाज़ एंड क्या खूबसूरत सा गाना फ्रॉम द फिल्म पापा कहते हैं। वेल, एक बात कहूँ, कुछ गाने जो है ना सिर्फ आपके लिए एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं होते, वो आपकी यादों का एक बड़ा सा हिस्सा बन जाते हैं।
1: मिर्ची अंशु।
0: वैसे पापा ने तो बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन चलिए सबसे पहले इस फिल्म की ही बात करते हैं। अगर मैं फिल्म की बात करूं जो रिलीज़ हुई 1996 में, उस फिल्म में अगर आपको कोई नज़र आए तो वो हैं जुगल हंसराज, एंड साथ में इस फिल्म में डेब्यू किया था मयूरी कांगो ने। अनुपम खेर थे, टीकू थे, एंड साथ में आलोक नाथ थे। लेकिन जब इस फिल्म के म्यूज़िक की बात हुई तो राजेश रोशन ने इसका कॉम्पोजिशन किया, एंड खासकर अगर आप इस गाने को देखने की कोशिश करेंगे तो ये लिरिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। एंड तब इसे लिखा था जावेद अख्तर साहब ने, एंड राजेश रोशन जी एंड जावेद अख्तर ये दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि ये जाएंगे डायरेक्टर साहब से बात करेंगे और ये कहने की कोशिश करेंगे ये काम करें, इस गाने को ना आप फिल्म के पहले शूट कर लें ताकि जो किरदार हैं, जो एक्टर हैं उनके बीच एक अच्छी खासी। लेकिन जब इस फिल्म के म्यूज़िक की बात हुई तो राजेश रोशन ने इसका कॉम्पोजिशन किया, एंड खासकर अगर आप इस गाने को देखने की कोशिश करेंगे तो ये लिरिक्स जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। एंड तब इसे लिखा था जावेद अख्तर साहब ने, एंड राजेश रोशन जी एंड जावेद अख्तर ये दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि ये जाएंगे डायरेक्टर साहब से बात करेंगे और ये कहने की कोशिश करेंगे ये काम करें, इस गाने को ना

बात कहा करते थे यार, कि जब हम जिंदगी को देखने की कोशिश करते हैं, कभी ऐसा लगे ना कि लाइफ मायूस है, या कोई शख्स है जिसने हमें हमारे मुताबिक काम ना किया, या हमसे हमारे मुताबिक बिहेव ना किया, और उस बात से अगर हमें दुखी होना पड़े या हमें कुछ बुरा लगे, तो पापा कहा करते थे कि एक बात याद रखना बेटा, लाइफ में ना किसी के पास इतनी हिम्मत या ताकत ही नहीं कि तुम्हें वो दुखी कर सके या परेशान कर सके, जब तक तुम खुद किसी को ये हक ना दो। यार लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, उनका काम है कहना, लेकिन उनकी बातों को अपने दिल में किस हद तक उतारना है, या किसी की बातों से कितना आहत या इम्पैक्टेड होना है, ये हौसला या ये ताकत किसी के पास है तो भाई सब तुम्हारे पास है। तो जो कोई कहे, जो भी कहे, मस्ती में मस्त रहो, बाकी लगे बस्ती में, पता है क्या है। अरिजीत सिंह की आवाज़ यानी अगला खूबसूरत सा गाना चलिए आप तक पहुंचाते हैं, कुछ देर में होंगी और भी बातें। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
2: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म केदारनाथ। एंड भाई सच कह रही हूँ, जब भी ऐसे कोई गाने मैं सुनती हूँ ना, तो मेरे जहन में सीधा बस एक ही ख्याल आता है,
1: मिर्ची अंशु।
0: और वो ख्याल बस यही होता है कि भाई किसी की तो शादी करा दो। पर अंशु एक बार फिर से आपके साथ आ चुकी है। एंड सच कहूँ यार कि हमारे घरों में ना यार शादियों का माहौल जो है काफ़ी अलग होता है। आई एम प्रीटी श्योर कि आपके घर में भी एक्सपीरियंस शायद यही होता होगा, क्योंकि अगर आप इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, फॉर दैट मैटर आप श्रीलंका या बांग्लादेश को ही देख लें, भैया हमारे घर ना शादियाँ जो है किसी फेस्टिवल से कम नहीं है, इनफैक्ट उनसे भी बढ़कर होती हैं। 4 से 5 दिनों तक चलने वाला ये सिलसिला, इसमें ना ही सिर्फ दुल्हा दुल्हन इन्जॉय करते हैं, सबसे ज़्यादा इन्जॉय अगर कोई करता है तो वो है यहाँ पे आए हुए मेहमान। एंड अगर वेडिंग्स को मैं देखूँ ना, तो हमारे घर का कल्चर एंड ट्रेडिशन कुछ इस तरह का है कि हर कोई अपनी राय जरूर पेश करता है कि क्या करना है, किस तरह से करना है और कैसे करना है। एंड समहाउ शादी के उस माहौल में, उस मौके में हर किसी की राय जो है कहीं ना कहीं मान ही ली जाती है एंड इम्प्लीमेंट भी हो जाती है। वो खाना पीना, सब लोगों का एक साथ आना, वो नाचना गाना एंड हाय, वो शादी की रस्में, वो जो पूरे वचन जब चलते होते हैं, तो जो शादीशुदा लोग हैं सबसे ज्यादा मजा तो तब आता है कि एक बार फिर से अपने अपने पार्टनर की तरफ देख के बोलते हैं, सुन रहे हो ये बात जो है ना तुमने शादी के समय कही थी। एंड फिर से एक बार वो किस्में खाने के वादे एंड ना जाने क्या कुछ यार। बिलीव मी, कहीं कहीं कभी कभी जिंदगी के इस पड़ाव में ना, जब ये मैं सुनती हूँ कि यार आज इसकी शादी हो रही है, उसकी शादी हो रही है, और हम जो है बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं ट्रैवल कर पाते हैं, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं तो मिस होती हैं यार। लेकिन लाइफ यही है भैया, जहाँ रह रहे हैं जिस हिसाब से रहना है, उस चेंज को बिल्कुल पूरी तरह से अडॉप्ट करते रहो। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी खास बात यह है कि हम जहाँ भी जाते हैं अपने रंग में लोगों को रंग ही देते हैं। तो किसी की शादी करवाएं ना करवाएं, लेकिन जिसकी भी एनिवर्सरी होती है ना, उसके चलते सामने वाले का खर्चा तो हम कराते हैं, लेकिन हाँ उनको शादी वाली फीलिंग जो है अपनी मस्ती से, मजाक से, बातों से दे ही जाते हैं। चलिए आपसे एक बात पूछती हूँ यार, जब आपकी शादी हुई थी जिस 20 साल, तो उस समय खाने की एक प्लेट का भाव जो है वो होता था तो कितना होता था? 5000 1896 आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम, मिर्ची वन कतरे मिर्ची अंशु। मीनवाइल जुबिन नौटियाल की आवाज में चलिए आपको अगला प्यारा सा गाना सुनाते हैं। एंजॉय, बिंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
2: यू नो आई वाज वेरी नर्वस, क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, पर नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, पहली मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी, अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं ऐसा कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं, यू नो, मतलब वो पहली बार सेट पे आई, पर तब
1: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानी शाह वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
4: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo, बुक योर्स नाउ।
3: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

0: पल बादशाह की खूबसूरत सी आवाज शमाली खुलकड़े का साथ, फिल्म का नाम बाला एंड ये पावर पैक गाना, ये दोनों तो मैंने आपको सुना ही दिया, लेकिन अगर अपनी जिंदगी में पावर एंड पैशन की बात करूं तो अब हाय क्या गजब तरह से ये मेरी जिंदगी में एंट्री मारने वाला है।
1: मिर्ची अंशु
0: यार, लोगों को ना जिंदगी में पैशन बहुत अलग अलग चीजों के लिए होता है। किसी को अपने काम के लिए पैशन होता है, किसी को अपनी हॉबी से होता है। अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ ना तो आई एम रियली एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट हैविंग अ डिलिशियस मील। वेल अंशु है इस वक्त आपके साथ। अब ज़रा डिलिशियस मील की डेफिनेशन क्या है ये समझते हैं। पता है यार, मैं जो कुछ भी खा रही हूँ, चाहे मैं खिचड़ी भी क्यों ना खाऊँ, सादी सी, मैं ना बड़ी खुशी से खाती हूँ यार। आई जेन्युइनली एन्जॉय एवरी पार्ट ऑफ माई मील। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान की आप ज़िंदगी को देखने की कोशिश करो तो बेसिकली वो इतनी मेहनत क्यों करता है, यू नो, वो इतना कमाता क्यों है। लाइफ की कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। हर किसी को लगता है कि एक अच्छा घर हो जिसमें हम रह सकें, अपने बच्चों की, अपने घर वालों की अच्छी हम केयर कर सकें, अच्छी पढ़ाई करवा सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें एंड साथ ही अच्छा खाना खा सकें। अब इस पूरे सीक्वेंस में, पूरे लिस्ट में मेरी लाइफ में अगर सबसे ऊपर कुछ आता है ना, ऑफ कोर्स घर वालों की ज़रूरत के अलावा, तो वो है अच्छा खाना। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग एंड द मेन थिंग। एंड मुझे एक बात और भी ज़्यादा लगती है कि चाहे आप जो कुछ भी खा रहे हो, कहते हैं ना 2 जून के आप रोटी भी क्यों ना खा रहे हो यार, उसे दिल से इन्जॉय करते हुए खाओ। आज की डेट में हम इस मुकाम पर पहुँच चुके हैं कि हम कुछ खाएँ, कुछ भी करें, हम अपनी उस प्लेट पे नज़र रखें ना रखें, लेकिन हाँ, वो जो एक हथेली में फिक्स होने वाला डब्बा यानी कि हमारा फ़ोन है ना, उस पर हमारा ध्यान जो है ज़रूर होता है। वही सब एक हैबिट जो है ना इनकलकेट करने की कोशिश करें। आपकी डाइनिंग टेबल में, आपके खाने की जगह में ना आपका फ़ोन होगा ही नहीं। सिर्फ घर वालों के साथ बैठ के अपने मील्स को एंजॉय करें। उसके बाद देखिए, सच कह रही हूँ, एक सिंपल सी आलू की सब्जी एंड रोटी भी खाएंगे ना, आपको कुछ ऐसा मज़ा आएगा कि लगेगा भाई ये खाना जो है ना किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। एक्सपीरियंस करके देखिए, उसके बाद बताइए कि लगा तो कैसा लगा। मीनवाइल कोई तो हेल्पलाइन है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, देखें क्या।
2: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
3: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
2: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
3: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।
4: रख, रख।

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना, उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा ज़माना ऐसा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sarah, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। Actually, जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था। तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओ नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा। पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rambala. Burga, burga. La virbala burga. Mirchi, burga.
2: हेलो
3: आशीष जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते हैं, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं मैं, सर मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया है फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है वो, क्या मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहा हूँ यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है, मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेड वेड मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है, मैं आप ऊपर ला रहा हूँ।
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे, यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव, सर आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई, अचानक ऐसे हो गया रात, वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ पर रहे हो?
3: मैं कहाँ पर हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई, क्या मतलब मेरे से खुश होने नहीं आ रहा, परेशान हूँ मैं, हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
3: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah live.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी. इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सबके सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं. ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार. तभी तो वेलकम की इतनी कदर है. लेकिन बताइए क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी. एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी. इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन की ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई. हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी. मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे. एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है. मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए. आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम. एंड यू नो व्हाट, एक बड़ी इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम. किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम. लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था. एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाड वाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है. एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम. और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म. फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए. फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम. आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार. दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए. प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए. जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
2: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
5: Dosti kai kuch sule madam? No sorry, no thank you.
6: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
8: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़े इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश्ड टू द हॉस्पिटल। लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुणाल खेमू, एज एन एक्टर आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको आपके सपने याद रहते हैं?
3: मुझे एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम, आई डोंट रिमेंबर माय ड्रीम्स, मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते, तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की।
2: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते, हर दिन की नई शुरुआत। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba ji se advice li to kehte hain.
5: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
4: Relative se advice lo to kehte hain.
6: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge to future bright hoga.
4: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
7: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
8: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
2: मेरी ऑफिस में मेरे से बेवकूफ लोगों को ज्यादा सैलरी मिलती है, क्या करूँ?
1: ओ माय बॉय, तो तू ये सोच कि असली बेवकूफ कौन हुआ?
3: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम सबको पता था कि
2: जस्सी जस्सी कोई नहीं
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And the show जस्सी जस्सी कोई नहीं was a hit. क्योंकि ये शो बात करता है अबाउट अ गर्ल हु इज अ गीक. और गीक्स को ट्रेंड में लाते हुए दिस शो ट्राइड चेंजिंग द आउटलुक कि दिमाग हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता. अरमान सर पर क्रश करती जस्सी के दिलों की धड़कन के साथ हमने भी उतार चढ़ाव किए हैं यार. एंड आई रिमेम्बर कैसे वी यूज्ड टू फील बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक जब अरमान और जस्सी के बीच कोई मोमेंट आया करता था. और सबसे सही बात अबाउट द शो वॉज कि कोई नहीं जानता था कि जस्सी रियल लाइफ में कैसी दिखती थी. एंड इट वॉज केप्ट टू बी अ बिग सीक्रेट. और उस टाइम पर तो ज्यादा टफ भी नहीं था बिकॉज पेपराज़ी एंड सोशल मीडिया तो था नहीं. और जब जस्सी का मेकओवर हुआ एंड वी गॉट टू सी मोना सिंह टू बी द फेस बिहाइंड जस्सी, ऑल वर इन ऑफ हर. और मुझे याद है कैसे हमने उस एपिसोड को किसी भी कीमत पर मिस ना करने की कसम खा ली थी. काफी शोज आए काफी शोज गए लेकिन ये बात तो सच है यार कि जस्सी जैसी कोई नहीं. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci. Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virba la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello, Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहे हैं
2: सर? मैं एक्चुअली आसर है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूं ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूं जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: सर कुछ गाके सुनाएगा?
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
2: वही सर, ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कौन से गाने हैं
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तने डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया।
1: मैं पागल है क्या?
2: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा।
1: सुन ले बात, बात सुन, पहले
2: हाँ सर।
1: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है ये बंद कर रहा
2: है सर, बोलिए।
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
2: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: Mercy Morga. Na vétke szállt. Only on Mercy. It's hot.
1: Yep, I got.
2: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
3: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
0: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
4: कम है के?
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अनुराधा जी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म साजन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अय हाय हाय, देखो पता है 90s का जमाना, तो मुझे नहीं पता कि डेटिंग के लिए कितना सेफ था और कितना यकीन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आज की बात मैं जरूर कर सकती हूँ। आज के टाइम पर अगर कोई ऐसा कह देना कि यू नो कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, भाई तुम किसी की भी कसम खा लो, मुझे ये पता है कि तुम्हारा डाइट फूड कसम ही है, तुम्हारा चीट फूड भी कसम ही है, और जो तुम्हारा मेन कोर्स यूजुअली तुम खाते हो वो भी कसम है। यानी कि आजकल उठते बैठते सब लोग कसम ही खा रहे होते हैं, और मुझे इस डिश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना, क्योंकि वो किस तरीके की कसम खा रहे होते हैं ना, हमें उसकी क्वालिटी का बिल्कुल नहीं पता है। आप क्या बोलते हो, आप कर लेते हो यकीन इस कसम नामक डिश का जो आजकल सब खाते रहते हैं?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। चलो यार, ये कसमें खा के नहीं तो सुन के पेट तो काफी भर गया है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स 90s के गानों के ज्ञान की तरफ, जहां पर दो गानों को मिक्स करके मैं चला देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो गाने हैं ये है कौन से। यहाँ टेस्ट होता है आपके ज्ञान का। तो यानी कि इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ध्यान का। तो ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए कि ये दो गाने कौन से है। Here we go।

बस जी, अब मुझे डीएम करना है और इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि ये दो गाने कौन से हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं।
2: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoo Noo. Book yours now.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: कोयला मूवी का एक गाना था बदन जुदा होते हैं। वेल, ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है, हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया। लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है, और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मशाय।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis karke, there was this music composer jisne bahut hi khoobsurat music diya hai. And inke music se Rajesh Roshan aksar kafi inspired rahe hain. सिर्फ वैंगेलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हिच साउंड्स जस्ट ब्यूटीफुली अमेजिंग.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट है तो DM कर दीजिएगा मुझे on my Instagram handle which is Mirchi Sara and stay tuned with me Sara आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi It's Hot.

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाल ही में रवि किशन ने जो होम फ्रॉम वर्क की बात छेड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि रवि किशन जेन्युइनली एक फनी इंसान है। तृप्ति डिमरी, आपको क्या लगता है?
2: He is just too funny. Like whatever he says, it's funny. He's कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ह्यूमर इनबिल्ट होता है। I think he is one of those people.
1: Tripti Dimri spilling some truth bombs on Mirchi. It's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
3: Our business is our business. None of your business.
4: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
6: 89.6
7: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताओ यार, कंपनी इतनी टॉक्सिक हो गई है मेरी। टीम से सब लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं अकेला ही बच गया हूँ, क्या करूँ?
1: अरे मामू, तो तू छोड़ देना तो कंपनी से क्या टॉक्सिसिटी चली जाएगी।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
3: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं तीन।
4: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा.
2: आज की बात 90s के साथ.
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और ऐसा नहीं है कि हम 90s किड्स के ड्रामाज नहीं देखा करते थे. हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने. और हमारे लिए के ड्रामास यूज्ड टू बी एकता कपूर के सीरियल्स जो के से ही शुरू हुआ करते थे. राइट फ्रॉम क्यों की सास भी कभी बहू थी टू कुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट. और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं. फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirci. Iskabala, uskabala, sakabala. Rambala. Murga, murga. La vizba la murga. Mirci, murga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: Hello, Ben ji.
1: Haan ji.
2: Ye, ek second. ये बहन जी, अब आपके पड़ोस में रहते हैं, ये मेरा एक्चुअली बच्चा बहुत रो रहा है और मेरी वाइफ का फोन लग नहीं रहा है, वो बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है। अगर
1: आप... आपके घर में कोई नहीं है क्या?
2: नहीं, वाइफ है, वो गई हुई है कहीं, तो आप थोड़ा सा, आपको अगर कुछ मालूम हो तो एक सेकंड।
1: अपनी वाइफ को फोन करिए ना, उन्हें बुलवाइए।
2: नहीं, मैं उनको ही फोन कर रहा हूँ, एक सेकंड। आली है मामा आएंगी, मामा आएंगी। एक सेकंड बहन जी, आप होल्ड करेंगी? एक सेकंड सर, आएंगी मामा, आएंगी, चीजी लाएंगी बेटो, चीजी लाएंगी। नहीं, चुप हो रहा। आई एम सो सॉरी, आपको भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं ऐसे।
1: नहीं, हाँ, इसमें डायपर पहना है तो चेक करिए, गीला तो नहीं है।
2: एक सेकंड, इधर आओ। हाँ, इधर आओ, देखो मामा आ गई, चीजी लाई। हाँ, डायपर गीला है बहन जी इसका,
1: तो उतार लीजिए।
2: एक सेकंड रुकिए। ये इसके गले में अटक रहा है डायपर, एक सेकंड।
1: शायद आप बेब उतार रहे हैं उसका।
2: अच्छा, ये बेब है, एक सेकंड।
1: देखिए, सुसु करा होगा उसने। अच्छा, देखिए।
2: हाँ, सुसु ही करा। चल,
1: उतार दीजिए।
2: एक सेकंड, उतार दिया। मैं जी, मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा सा कह देंगे, मैं स्पीकर फोन पे लगा देता हूँ, शायद आपकी आवाज से समझ आए जरा। देखो आंटी कर रही है, क्लैपिंग करो।
1: चुप हो जाओ, पेट दर्द वगैरह ना हो, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर जाइए।
2: हाँ, मुझे भी वही याद आ रहा है। नहीं बहन जी, आप सही कह रही हैं, रात को ना इसने वो मुर्गा खा लिया था, जिससे पेट में दर्द हो जाता है और थोड़े बहुत कान खराब हो जाते हैं। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैंने आपका नंबर डायल किया।
1: और मैं पागल हूँ।
2: अब जरा मेरे साथ प्यार से बोल दीजिए एक बार।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: जा सिमरन, जा जीरे अपनी जिंदगी, जा बेटा, जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear TV के शटर वाले कैबिनेट.
2: यादों को चिट्ठी.
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के. हमारे घर में नहीं थे लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ. वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है. मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था. लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छिपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी. तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था. बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार. आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं बेबाक और बिंदास. तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहां चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Countdown shows में बाली ब्रह्म भट्ट का जब ये गाना आया करता था तो at that time this was just a melody for us. किसको पता था कि बड़े होते होते ये गाना जज्बात में तब्दील हो जाएगा?
0: मिर्ची 90s का सेट.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And 90s के दौर का बाली ब्रह्म भट्ट का एल्बम का ये गाना.
2: तेरे बिन जीना नहीं, ओ मेरी जाने वफा.
1: What a melodious track, यार. लेकिन ये जो गाना आया करता था तो मुझे ये गाना इसके एस्थेटिक्स की वजह से अच्छा लगता था, इसके वीडियो की वजह से अच्छा लगता था, इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता था, कानों में ना काफी चाशनी खोल दिया करता था. लेकिन इसके लिरिक्स पे कभी ध्यान ही नहीं गया अंटिल एंड अनलेस मैं बड़ी हुई, क्योंकि ये गाना जो है वो ये कहता है कि तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा, जिंदगी भर साथ रहकर मुझे होना नहीं है जुदा. And that is such a heartbreaking statement for anyone to make, yeah. Seriously, I mean, some people जो न जाने कितने साल एक साथ बिता देते हैं, and then there comes a situation जहां उनको ये decide करना पड़ जाता है कि अब वो साथ नहीं रह सकते. मतलब वो जो रोज बातें हुआ करती थी, वो जो रोज सुबह गुड मॉर्निंग होती थी, गुड नाइट उसी की आवाज से हुआ करती थी, दिन में कुछ वक्त साथ बिताया करते थे, एक दूसरे की जिंदगी जो है वो शेयर किया करते थे एक दूसरे के साथ, अब ऑल ऑफ अ सडन वो इंसान हमारे लिए स्ट्रेंजर बन जाए, ये सबसे ज्यादा दुखदायी हो जाता है यार. खुदा ना करे कि किसी के ऊपर ऐसा कहर बरसे, लेकिन क्या है कि किस्मत भी कोई चीज है, किस्मत में जिसका जितना साथ लिखा होता है ना उतना ही बिता पाते हैं उसके साथ. बट स्टिल द पॉजिटिव वे टू लुक एट इट इज कि यार जितना बिताया क्या पता उतना भी ना होता हमारी जिंदगी में तो क्या करते, एटलीस्ट ये टाइप तो मिल गया ना जो बिता लिया है, बाकी किस्मत का लिखा और ऊपर वाले का किया, उसके कहे बिना तो यार एक पत्ता भी नहीं हिलता. चलो अब यहाँ पे बहुत काउंसलिंग हो गई है, टाइम फॉर दिस गाना. जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है राय प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ के अलावा ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कॉज इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Amit Trivedi, studio hai, guitar hai, mahol hai. Rukein kis liye hain aap?
3: होने दो बतिया सीने में दिल सॉरी वन मोर टेक प्लीज
2: टेक एज मेनी टेक्स एज यू वांट अमित त्रिवेदी हम तो सुनते रहेंगे मिर्ची इट्स हॉट
0: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना
5: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है
6: कैसे रुक सकता है
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
1: FM मिर्ची वन इट्स हॉट

0: ना ना ना, ये आपकी गलती नहीं है, ये मौसम की गलती है जो पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि ह्यूमिडिटी का लेवल अब हमारे कतर में हर दिन के साथ बढ़ेगा, ऐसा कतर मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट ने कह दिया। आ गया मिर्ची घड़ी में शाम के 4:04 पर आपका यार।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: लेकिन इतनी मेहनत से अपने दिमाग में जो सब भरा था वो धीरे धीरे करके डिलीट करना पड़ेगा यार। कहीं सुहानी मेरे दिमाग को पढ़ ली तो कहीं पब्लिक में हमारे सामने की बातें इधर उधर कर दी तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल यस द मेंटलिस्ट सुहानी शाह, जो कि इंडिया में धमाका कर चुकी है, बवाल कर चुकी है, सलमान खान से लेकर आमिर खान तक, केएल राहुल से लेकर आर माधवन तक, सबको पागल कर दिया था उन्होंने अपनी ऐसी एग्जैक्ट सटीक मेंटलिस्ट बनकर। उनके दिल की बातों से लेकर दिमाग की बातों तक को पढ़ लेती हैं। वो हमारे कतर में आने जा रही हैं। टिकट्स बुक कर सकते हैं आप एट SCT बुलेटिन नूनू पर, जहां पर ये टिकट्स लाइव हैं एंड अर्ली बर्ड ऑफर अभी चल रहा है। जितनी जल्दी हो सके कर लो जल्दी जल्दी बुक, क्योंकि 25 सितंबर QNCC में होने वाला है असली मजेदार धमाका। वेल इन सब के बीच बस पौरा गौरव आ गया लेकर बहुत सारी बातें, जहां पर कतर मिनिस्ट्री ने समर ट्रेवल सेफ्टी गाइडलाइंस इशू किए, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी को लेकर कुछ वार्निंग मिली है, MOI ने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कैसे कम किया जाए उस पर है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट यहां होंगी, गेम्स यहां होंगे, मस्ती यहां होगी, सारी इंफॉर्मेशन आपके कानों में जाएगी, बस आपको एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट मिलेगा। फिलहाल तो मधोश सिद्धार्थ बसूर के बाद मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Buscabana, buscabana, sacabana. Burga, burga. La vida para burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये?
3: समाचार
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे अच्छा। टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
4: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना। शिवानी मेरी बात सुनो,
3: नहीं
4: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? 4 balls left. They need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं, या
9: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
10: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
8: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
11: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
8: The mentalist Suhani Shah.

भैया देखिए सौदा खरा खरा है, आप हमारी तरफ अपने कान देंगे और हम आपको एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट देंगे। लेकिन आज हम कान लगाकर एक इम्पोर्टेंट बात की तरफ ध्यान देंगे जो कि हमारे कतर में बहुत हद तक कुछ लोगों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रोक पाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और नेशनल कमिटी फॉर कॉम्बैटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग दोनों ने मिलकर एक नेशनल रेफरल मैकेनिज्म का यूज करके ह्यूमन ट्रैकिंग के खिलाफ, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, उसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ने के लिए एक साथ काम करने पर जोर दिया। और ये बेसिकली ह्यूमन डिग्निटी को बचाने के लिए, उनको सेफगार्ड करते हुए, उन्हें जुडिशियरी हेल्प, हेल्थ केयर, सोशल एजेंसीज के साथ मिलकर उन सारे विक्टिम्स को लीगल तरीके से मेडिकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करना है, इस पर जोर दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का यह मानना है कि इस तरह की चीजों को जो लोग बढ़ावा देते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कतर जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहा है और बहुत सारे डिपार्टमेंट एक साथ काम कर इस चीज में एक तरफ एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम और आप जानते हैं कि दुनिया के कई सारे देशों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और ऐसे में जब कतर इस तरह के कठोर कदम उठाता है उन लोगों पर जो इस तरह के काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और साथ ही साथ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स हैं उनको जिस तरह से सर्विसेज दी जाएंगी ताकि उनका मेंटल ब्रेकडाउन ना हो, साथ ही साथ उनको मेडिकल असिस्टेंस भी टाइम पर मिले, ये सब कुछ, एंड ये बताता है कि कतर की सोच हर इंसान के लिए कितनी प्योर पायस है। एंड मैं बस इतना ही कहूंगा कि एजेंसीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और हमारे और आप जैसे लोग हैं जो अगर इस तरह की कोई भी चीज देखते हैं जहां पर आपको लगता है, संदेह भी होता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, जरूर रिपोर्ट कीजिए। अब तो मेहतराज पर ऑप्शन है, ऑप्शन जाकर आप CID बकायदा रिपोर्ट कर सकते हैं इस तरह के किसी भी केस को। तो अपने कान आंख चौकन्ने रखिए एंड कोशिश यही कीजिए इस तरह की चीजों को जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं उनको पुलिस तक जरूर पहुंचाना है। 89.6 मिर्ची 1 इट्स ऑल।

0: अरे ससुरा बस। हाँ जी गाना खत्म हुआ लेकिन आपके साथ आ गया आपका दोस्त एनडीवी और सजनों मस्त मौला गौरव आपके साथ है तो बातें बहुत सारी करते हैं लेकिन इस बातों में आपको याद दिला दें कि अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज कर लो 25th ऑफ सितंबर क्यूएनसीसी में आ रही है द मेंटलिस्ट सुहानी शाह जो कि इंडिया से पहली बार कतर में आएंगी एंड आई एम श्योर एक शानदार शाम आपके लिए इंतजार कर रही है देवी और सजनो प्रेजेंटेड बाय आईपे द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड ये मैजिक मिस करना नहीं है 25th ऑफ सितंबर को क्यूएनसीसी में शाम 5 से 7 अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो आप एससीटी बोले तो स्नूनू पर जाकर जहां पर अभी अर्ली बार ऑफर चल रहा है हमारे साथ हमारे एसोसिएट पार्टनर है डेरी क्वीन पापा जॉन्स हमारे रेस्टोर पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू हमारे इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स हमारे मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया इसके अलावा थैंक यू कहना चाहेंगे सिम्फनी को जो है प्रोडक्शन पार्टनर एंड हमारे एडवर्टाइजिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स ये सारे के सारे लोग एक साथ आए हैं ताकि सुहानी शाह कतर में एक बेहतरीन शाम दे पाए एंड ट्रस्ट मी जिस तरह की ये मेंटलिस्ट हैं हालत तो खराब हो रही है मेरी मैं इसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सकता लेकिन आप अगर आ जाओगे ना तो आपके सामने हिम्मत करके मैं चला ही जाऊंगा क्या पता कितना ही मेरे दिमाग को पढ़ पाएगी क्योंकि मेरा दिमाग तो है शातिर लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं फिलहाल आप अपनी टिकट्स बुक करो इस मैजिक को मिस मत करो एंड क्यूएनसीसी 25th सितंबर जिसके अर्ली बर्ड ऑफर टिकट्स अभी ऑन हो चुके हैं यस एससीटी स्नूनू पर ही आपको मिल जाएंगे 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव आपके साथ मिर्ची
1: देखा तेनू पहली पहली
0: हिम्मत नहीं कर सकता लेकिन आप अगर आ जाओगे ना तो आपके सामने हिम्मत करके मैं चला ही जाऊंगा क्या पता कितना ही मेरे दिमाग को पढ़ पाएगी क्योंकि मेरा दिमाग तो है शातिर लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं फिलहाल आप अपनी टिकट्स बुक करो इस मैजिक को मिस मत करो एंड क्यूएनसीसी 25th सितंबर जिसके अर्ली बर्ड ऑफर टिकट्स अभी ऑन हो चुके हैं यस एससीटी स्नूनू पर ही आपको मिल जाएंगे 89.6 मिर्ची 1 पर मस्त मौला गौरव

0: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा। फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क। रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप। यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3,000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस। तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, डीरिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे। टीएनसी सप्लाई।
1: गूगल आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, इंस्टाग्राम आपकी लाइक्स, नेटफ्लिक्स आपकी चॉइस, लेकिन सुहानिशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के। एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानिशा लाइव इन कतर ऑन 25th सितंबर एट QNCC।
2: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo। बुक योर्स नाउ।
1: द मेंटलिस्ट सुहानिशा।

0: सूरज चाचू आप अपनी ब्राइटनेस बढ़ा दिए, एसी चलाना भूल गए। क्योंकि हम लोग तो अपना एसी चला रहे हैं, आप अपना एसी शायद भूल गए, उसकी वजह से ज्यादा गर्मी हो गई है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: लेकिन सच कह रहे हैं, दिन का मैक्सिमम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है, दिन का मिनिमम भी करीब करीब 33 के आसपास आएगा, लेकिन आज गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, 44 से तो ज्यादा ही वाली फीलिंग आ रही है। ये इस वजह से क्योंकि ह्यूमिडिटी का भी पारा बढ़ा हुआ है, एंड ओवरऑल जबरदस्त तरीके से 35% ह्यूमिडिटी के साथ आपको काफी ज्यादा आज दिन भर गर्मी लगी होगी और अब शाम को और बढ़ेगी। हवाओं की रफ्तार की बात करें, 14 किलोमीटर प्रति घंटे से चल तो रही है लेकिन किसी काम की नहीं है। एंड कतर म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट ने कह दिया है कि भैया जबरदस्त लेवल की जो ह्यूमिडिटी है वो बढ़ने वाली है, चश्मा पहनने वालों हो जाओ सावधान, क्योंकि आपको अब करना पड़ेगा थोड़ा एक्स्ट्रा काम, बार बार चश्मे साफ करने पड़ेंगे क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। एसी से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे एकदम से आपकी आंखों के आगे एक अलग सा फॉग छा जाएगा। बस इसी उम्मीद के साथ कि आने वाले कुछ दिनों तक अब हमें इस ह्यूमिडिटी को इसी तरह झेलना है, आगे बढ़ते हैं, पानी पीते रहिए, बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाइए, एंड मिर्ची सुनते जाइए क्योंकि गबरू आ गया है गुरु रंधावा की आवाज में। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: माधुरी जी, आप अपने ग्रेस, एलिगेंस, पॉइज, अदा, इन सब के लिए जानी जाती हैं। असली में माधुरी दीक्षित कौन है?
3: The elegance and this and that, everything inside is me is like a mad person. And I love mad comedies. And I love these kind of situations which are like larger than life. वो कुछ अजीब सा हो रहा है इनके साथ, अजीब से कैरेक्टर्स हैं सब, you know, सब पागल, unhinged kind of characters.
2: अब समझी, इसीलिए लोग प्यार से आपको मैड्स भी बुलाते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: अरे यार, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
5: क्योंकि मैंने रिचार्ज किया ओरेडो के योर स्पेशल ऑफर से।
4: योर स्पेशल ऑफर?
5: हाँ, ये रिचार्ज मेरे हाला नंबर के लिए स्पेशली बना हुआ ऑफर है। ज्यादा वैल्यू और वो बेनिफिट्स जो मुझे एक्चुअली चाहिए।
4: ये तो मेरे नॉर्मल रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
5: बिल्कुल, योर स्पेशल ऑफर मेरे लिए सबसे अच्छा रिचार्ज ऑप्शन है।
4: ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बना है खास आपके लिए। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
8: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
9: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
7: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
10: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
7: The mentalist Suhani Shah live.

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल।
1: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: अरिजीत सिंह का रिटायरमेंट ना हो गया, कटनी वॉल्स का रिटायरमेंट हो गया। कटनी वॉल्स ने क्रिकेट से संन्यास लिया, वापस से क्रिकेट खेल लिया, वैसे ही अरिजीत सिंह हो गए, कह रहे मैं नहीं गाऊंगा बॉलीवुड के गाने, फिर गा दिए। खैर चलो जी, गाना गा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, कोई बुराई नहीं है सर, सबके अपनी अपनी मर्जी। 5:05 का टाइम।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: हम तो हैं जी मस्त मौला गौरव एंड आपके साथ करते हैं ढेर सारी मस्ती। इस घंटे बारी आ गई खेलने की।
3: पहचान कौन?
1: और पहचान कौन में एक आवाज सुनाई देती है, आपको बताना होता है कि ये आवाज है किसकी और आज के बर्थडे बॉय की आवाज ये रही।
4: एक सवाल था मेरा कि दो दोस्त जब बहुत प्यार होता है उसके बाद कई बार लड़ाई हो जाती है, कैसे वो 6 साल का गैप ना पड़े, ऐसा क्या करे, या दोबारा लड़ाई हो जाए तो फिर जल्दी जल्दी सुलझ जाए।
1: ये आपको बताना है किसकी आवाज है जो मैं आपको आज सुना रहा हूँ।
4: एक सवाल था मेरा कि दो दोस्त जब बहुत प्यार होता है उसके बाद कई बार लड़ाई हो जाती है, कैसे वो 6 साल का गैप ना पड़े, ऐसा क्या करे, या दोबारा लड़ाई हो जाए तो फिर जल्दी जल्दी सुलझ जाए।
1: 5:00 पर बस इतना ही कह सकते हैं, बड़ी मशहूर आवाज है और इसी में हिंट छुपा है मेरी जो बात है, इसमें बड़ी मशहूर आवाज है जी। एंड आपको बताना है ये कौन से स्टार की आवाज है।
4: एक सवाल था मेरा कि दो दोस्त जब बहुत प्यार होता है उसके बाद कई बार लड़ाई हो जाती है, कैसे वो 6 साल का गैप ना पड़े, ऐसा क्या करे, या दोबारा लड़ाई हो जाए तो फिर जल्दी जल्दी सुलझ जाए।
1: देखिए भाई, ये बड़ी सिंपल सी चीज है, अगर आप दिमाग के थोड़ों को दौड़ाएंगे तो आप ये पकड़ पाएंगे कि क्या है ये। 5:00 पर मस्त मौला गौरव आपसे इंतजार कर रहा है एंड यही कह रहा है, वॉइस नोट पर अपना जवाब भेजिए, यानी कि रिकॉर्ड कर दीजिए फटाक से, गौरव ये जवाब है, गौरव ये जवाब है, गौरव ये जवाब है, जल्दी भेजिए 89.6 मिर्ची 1 पर। तब तक शरारत करते हैं थोड़ी सी, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: I z kabana, po z kabana, sa kabana. Kabana. Burga, burga. Na wiedwala burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: अजीत जी, आपका एड्रेस क्या है? ये मैं तीसरी गली पे खड़ा हूँ, ये मरानी बाग की तरफ। आपने कहाँ एग्जैक्टली कहाँ बताया है?
2: कौन बोल रहे हैं अभी तो बताइए।
3: वो आपका कोई पैकेट है, ये गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, मेरे को तो मालूम नहीं। कह रहे थे पूछा उनके घर चले जाना, हम बाद में आ जाएंगे।
2: कहाँ से आ रहे हो, क्या लेके आ रहे हो, अभी तो बताओ।
3: मेरे को तो मालूम नहीं, मैं ड्राइवर हूँ।
2: जस्ट बाद लेफ्ट जो जा रही है गली, लाल रंग पेंट हुआ है।
3: अंदर तो आ गया हूँ, इसमें गाड़ी नहीं दिख रही आपको? आपका घटो पहले भी बताओ ना मेरे को।
2: मैं तो बालकनी में खड़ा हूँ, आप कैसे पैदल आ रहे हो?
3: मैं तो आ गया हूँ, जिप्सी आ जाएगी, मैं उनको फिर कैसे बताऊँ एड्रेस? वो अंदर आ सकती है, इतनी छोटी तो रोड होगी।
2: कौन कौन आ सकते, किसकी जिप्सी?
3: एक तो समन है आपके नाम का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और पीछे हमारे वो जिप्सी वाले और पुलिस वाले आ रहे हैं, वो आपके घर को रेड वेड मारेंगे।
2: नहीं मैं सर, मैं चक्कर ये, मैं तो अभी घर पे हूँ नहीं।
3: तो मैंने तो सर लैंडलाइन पे किया फोन।
2: वो भी जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, वो
3: आ गए वो भी आ गए हैं, आगे वो भी आ गए। एक दिन होल्ड करिए, आगे होल्ड करिए। फोन घर पे नहीं है?
2: फोन तो घर पे है, लेकिन मतलब घर पे नहीं है। वो क्या, मैं घर पे नहीं हूँ।
3: आगे वो भी आ गए, दूसरी भी गाड़ी आ गई है। पागल थोड़ी बन रहे हो यार, यहाँ पे दोनों गाड़ी आ गई है। मिलो यार उनसे, समझ लो जो रेट वेट मारेंगे उनसे बात करो, मेरे को पता नहीं है। मैं आप पहला रहा हूँ,
2: मैं बाद में मिलूंगा आपसे। यहाँ मैं किसी की डेथ में आया हूँ।
3: किसकी डेथ हो गई सर?
2: वो मेरे भाई की डेथ हो गई।
3: रुकिए आशीष भार्गव सर, आपके फार्म पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स फार्म में आपका ब्रदर तो कोई नहीं है, आपके फादर का नेम है, एक बच्चा है उनका, वो आप हो। आप भाई की डेथ कैसे कर रहे हो?
2: भाई की मैं गलत बोल गया, वो अपने फादर की डेथ हो गई। अचानक ऐसा हो गया, रात वो कुछ उनकी तबीयत खराब हो गई थी, रात ही फोन आ गया था, रात सुबह में उनकी डेथ हो गई, जो 7-8 किलोमीटर दूर है। आप अभी कहाँ रहे हो?
3: मैं कहाँ रहा हूँ,
2: सॉरी आप अभी कहाँ पर हो?
3: मेरे को पहले बता देते कि यार ऐसे वो हो गया।
2: ऐसा है ना, ये देखो हम लोग शरीफ आदमी है, हमारे घर कभी ऐसे पुलिस वुलिस नहीं आई भाई। क्या मतलब मेरे से खुश होने आ रहा है, परेशान हूँ मैं। हर साल का रिटर्न वेटर्न सब फाइल कर देता हूँ वो अभी।
3: आशीष मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला था तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा
2: यार।
3: थैंक यू।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? 4 balls left, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर 1 मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoo Noo. Book yours now.
6: The Mentalist Suhani Shah live.

0: Dairy Queen and Papa John's. Enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44. Two medium pizzas at 66. Two large pizzas at 99 Rial. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक.
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: हॉली हॉली गुरु धवा योहनी सिंह ने गगड़ के आवाज में गाना सुनाया कि इसने फिलहाल आपको हम इस घंटे एक आवाज सुनाते हैं, गाने के बाद वो आवाज फिर से आएगी और आपको पहचानना है कि किसकी आवाज है।
1: एक सवाल था मेरा कि दो दोस्त जब बहुत प्यार होता है उसके बाद कई बार लड़ाई हो जाती है, कैसे वो 6 साल का गैप ना पड़े, ऐसा क्या करे, या दोबारा लड़ाई हो जाए तो फिर जल्दी जल्दी सुलझ जाए।
0: आज के बर्थडे बॉय भी है, बताइए किसकी आवाज है।
2: हेलो गौरव भाई, माय नेम इज नितिन और ये आवाज दलजीत दोसान की लग रही है मेरे को।
0: गलत जवाब, और कौन है?
3: गुड इवनिंग गौरव, हाउ आर यू, दिस इज यूसुफ भाई। ये आवाज है सुनील ग्रोवर की,
0: ओके,
3: कपिल शर्मा के दोस्त डॉक्टर मशहूर गुलाटी, ओके, थैंक यू, बाय बाय।
2: हेलो गौरव भाई, माय नेम इज नितिन
0: जी
2: और ये आवाज दलजीत दोसान की लग रही है मेरे को।
0: नितिन भाई गलत गलत
4: गलत। हाय गौरव, दिस इज जिग्नेश, आई थिंक ये आवाज सुनील ग्रोवर की है।
5: हाय गौरव, I think it is none other than Sunil Grover, right?
0: Okay, we'll let you know.
6: Yeah, ji, sound is Sunil Grover ji ka. Sunil Grover ji ka sound.
7: Hi, Gaurav.
0: Hi, hi.
7: This is Adil Ahmed. And the actor name is Guthi. Aka Mashur Gulati. There are many names of him, but his real name is Sunil Grover. The best. Mirchi, it's hot.
0: Yes, Mirchi, it's hot and this is Sunil Grover की वॉयस। बस एक नितिन भाई ने गलत पकड़ा, उन्होंने कह दिया यार ये मुझे लग रही है कि आवाज दिलजीत पाजी की, नहीं बिल्कुल नहीं नितिन जी, गलत हो गया आपका जवाब। एंड यस, आज के बर्थडे बॉय अगर ये कहें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि सुनील ग्रोवर मल्टीपल एक्टर्स की मिमिक्री, उनको पूरा हूबहू उतार लेते हैं। एंड मैं इसीलिए कहता हूँ कि सुनील ग्रोवर सिर्फ एक ही है भाई, ये कोई नहीं सकता। वो सलमान खान बनते तो सलमान खान, शाहरुख खान बनते तो शाहरुख खान, वो कादर खान बने तो लोगों ने भाई नमन कर दिया। 50 से 1 कम भाई का हैप्पी वाला बर्थडे है 49th। एंड इतना ही कहूँगा कि आपके 49,000 स्वरूप देखने को मिले और हम आगे आपको ऐसे ही प्यार देते रहें। यू आर वन ऑफ द बेस्ट अमेजिंग आर्टिस्ट वी हैव एवर सीन। 89.6 मिर्ची, वन इट्स ऑल।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah live.

0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Oreo Strawberry Choco Blizzard at Dairy Queen. And Papa John's, enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44, two medium pizzas at 66, two large pizzas at 99 Rial. Papa John's, better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony. घर बैठे चाहिए नया कार्ड, स्मार्ट चॉइस है ओरिरो मनी कार्ड। अप्लाई करो आज ही और क्यू पोस्ट से पाओ डोर स्टेप डिलीवरी कहीं भी इन कतर। एक्टिवेट करते ही शॉपिंग करो लोकल या इंटरनेशनल। और सुनो, हर एप्लीकेशन पर जीत सकते हैं एक ब्रांड न्यू आईफोन 17 प्रो मैक्स। लेट मत करो, ऑर्डर योर ओरिरो मनी कार्ड स्ट्रेट अवे। TNC अप्लाई।
3: दोस्ती कैसे सुले मैडम? नो सॉरी, नो थैंक यू।
4: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू। हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए।
5: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
6: खूब मिलेगा, मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

है सुष्मिता सेन का इंट्रोडक्शन। पूरी इंडस्ट्री में लोगों ने इस नए नाम को और सेंसेशन को पहचाना इसी गाने से। एंड कितनी परफॉर्मेंस फिर हम लोगों ने देखी अलग अलग वेडिंग्स में हर जगह। वैसे फिलहाल दिलबर गाना अलका याग्निक की आवाज में यहाँ मस्त मौला गौरव ने सुना दिया, लेकिन दिलबर दिल जानी आगे जानी आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं। यस, हमारे कतर में आ रही है दी मेंटलिस्ट सुहानी शाल लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेड बाय आईपे, जहां हमारे आपको एसोसिएट पार्टनर मिलने वाले हैं डेयरी क्वीन, पापा जॉन्स, रेस्टोरेंट पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, इसके अलावा सिंफनी प्रोडक्शन पार्टनर एंड हमारे ब्रांडिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, ये सब के सब आ गए हैं क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह को पहली बार कतर में। एंड अर्ली बर्ड ऑफर, सच बता रहे हैं ये अगर बुक किया तो ही आपका फायदा होने वाला है। एंड कुछ लोग मैसेज कर पूछ रहे हैं कैन इट बी फ्रेंड्स, आई एम नॉट हियर विद माई बेटर हाफ। नो प्रॉब्लम सर, आप ले सकती हैं। नंदिता जी आपको भी कहूंगा आप बिल्कुल ले सकते हैं, विद योर फ्रेंड यू आर बी काउंटिंग एज ए कपल ओनली, यानी कि दो लोगों को ही बस टिकट खरीदनी है उसमें। आप चाहे जैसे भी खरीदें, अपने दोस्त के साथ खरीदें, दोस्त के साथ, सहेली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खरीदे, कोई नहीं रोकने वाला आपको। बस दो टिकट पे ही अर्ली बर्ड ऑफर लगेगा, इस बात को समझिए, जितनी जल्दी हो सके बुकिंग कीजिए। एंड मस्त मौला गौरव को थैंक यू कीजिए क्योंकि ये शो कतर के इतिहास में लंबे समय तक याद किया जाएगा। दिस गर्ल हैज डन वंडर्स, चाहे वो आर माधवन हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, एबी डी विलियर्स, रिकी पॉइंटिंग, केविन पीटरसन, दुनिया के बड़े न्यूज चैनल्स पर बैठ के लड़की ने सबके कोड क्रैक किए हुए हैं। ये एक कमाल की अपॉर्चुनिटी है एक मेंटलिस्ट को देखकर यह सीखने की कि जिंदगी में क्या क्या किया जा सकता है। 89.6 मिर्ची वन, जल्दी जल्दी टिकट बुक करो, एस सिटी बोले तो स्नूनू पर जाकर मिर्ची थॉट। फिलहाल ऐश किंग एंड सचिन जिगर कह रहे हैं नजर न लग जाए तो नहीं लगाएंगे भाई, बात जब स्त्री फिल्म की है तो हम सुनाएंगे गाने।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
3: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती. तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हो जाऊंगी. अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है. तो आई वाज लाइक, मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूं. मैं जब वो पहली बार सेट पे आई, बट तब
2: आलिया वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं. चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
5: Google आपकी सर्च हिस्ट्री जानता है, Instagram आपकी लाइक्स, Netflix आपकी चॉइस, लेकिन सुहानीशा वो सब जानती है बिना किसी प्रॉम्प्ट, पासवर्ड या परमिशन के. एक्सपीरियंस द इम्पॉसिबल फॉर द फर्स्ट टाइम. इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव इन कतर ऑन 25th September एट QNCC.
6: अर्ली बर्ड टिकट्स आउट नाउ, गेट देम एट STD Snoo Noo. बुक योर्स नाउ.
5: द मेंटलिस्ट सुहानीशा लाइव.

हाँ जी, बदरी की दुल्हनिया खत्म हुआ, लेकिन आ गया वो जो लेके आपके पास अच्छी बातें आता है। हाँ जी, और जब आ गए हैं तो बातों ही बातों में ये बता देंगे कि देखिए भाई, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत दौलत की है, और वो दौलत अगर आपने कमाई है और आपकी सैलरी आई है तो भेजो ना घर, रेट हम बता रहे। राइट नाउ की बात करें, एक कसरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीस 26.14 रुपए हैं, 26.14 INR। वही एक कसरी रियाल के बदले लंकन रुपीस 92.10। अगर हम जनाब पाकिस्तानी रुपीस की बात करें, वाहिद कसरी रियाल के बदले 76.35, यस 76.35 पाकिस्तान रुपीस। वही तपाईँको नेपाली रुपिस का रेट छ दाजु, एक कसरी रियाल के बदले 41.75 को भल छ रेटर बहिनी। हाँ जी, 41.75 को रेट छ हजुर, घर भेजन लाइक एकदम राइट टाइम छ। अगर इसके बाद बंधु बांग्लादेशी टाका बात करके दादा, एक टा कतरे रियाल के बदले 33.97, तो 33.97 बाड़ी थी के पैसा भेजी दो। मस्त मोलो गौरव आपके साथ, एंड ये पैसे भेजकर आप घर वालों के बीच में खुशियां तो लाई देते हो, अपने मन को भी सुकून देते हो कि यार कोई तो है जो हमारे इस मेहनत से खुश हो रहा है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट, ऊपर वाला करे आपकी हर दुआ कबूल हो। अगला गाना नंदिनी श्रीकर अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो आटा मेरे हाथ में चिपक जाता है, क्या करूँ?
1: हाथ में चिपक जाता है? सिंपल तो है, क्या क्या करूँ? पैर से आटा गूंथ, हाथ में नहीं चिपकेगा।

0: संजू राठौर छावे भाई, आजकल सब गाने में तुम्हें सुनाई दे रहे हो। मस्त मौला गौरव। लाल मिर्ची घड़ी का टाइम बता दें, 6:04 होने को आ गए।
1: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
0: चलो जी 6:04 और जब मैं आपके साथ हूँ तो इस घंटे भी खेलूंगा वो जिसे कहते हैं।
2: अब शुरू होता है बॉलीवुड का सरप्राइज टेस्ट।
3: ओके सर।
0: अब बोल तो मैम रहे हैं लेकिन हम उनको सर कह रहे हैं क्योंकि क्लास के बच्चों की शैतानी ऐसी होती है। इन सब के बीच आज का सवाल बड़ा ही सिंपल है। सुनील ग्रोवर की वो फिल्म, आज क्योंकि बर्थडे बॉय हैं, 49 इयर्स के कंप्लीट हो गए हैं, हाँ जी, सुनील ग्रोवर की वो फिल्म जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार को पकड़ा था, 5000-1896 पर। सुनील ग्रोवर की वो फिल्म जिसमें उन्होंने अक्षय कुमार को पकड़ा था, हाँ जी, अब बताइए कौन सी फिल्म है। आमिर खान वाली तो आपको याद है। आइए सुनील ग्रोवर अक्षय कुमार वाली फिल्म के बारे में थोड़ा सा आपसे सवाल जवाब हो जाए। सुनील ग्रोवर अक्षय कुमार कौन सी फिल्म थी? 5000-1896 5000-1896 पर अपना जवाब भेजिए क्योंकि अगली बार हम अपने जवाब के साथ लौट आए तो आप मौका चूक जाएंगे। याद रखिए 5000-1896 पर आपको बताना है सुनील ग्रोवर अक्षय कुमार को किस फिल्म में पकड़ गए थे अपने रोल में, हाँ जी यही आपको बताना है। एंड फिलहाल के लिए आप मेरे बंधु हैं, दोस्त हैं, सखा हैं, इसलिए आप मुझे इसका जवाब वॉइस नोट में भेजिए, यानी कि रिकॉर्ड करके, गौरव सुनील ग्रोवर ने फलानी फिल्म में, सुनील ग्रोवर ने अक्षय कुमार को फलानी फिल्म में भेजा था, जल्दी जल्दी भेजो।

0: Energy. Iskaba na puskaba na sakaba na. Rambala. Burga, burga. La vida la burga.
1: हेलो
2: मिस्टर गौतम,
1: कौन बोल रहे हैं?
2: सर मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन का है सर, नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: हाँ, सर कुछ गाके सुनाइए।
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है एनाकोंडा आपने? एनाकोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ।
2: वही सर एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं?
2: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया एनाकोंडा में, यही बात है मेरे लिए। मैं एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा।
1: सुन ले बात,
2: मेरी बात
1: हाँ। सुन पहले बात सुन।
2: हाँ सर,
1: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है। सर बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
2: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Mirci Morga na Vedke Sat. Only on Mirci. It's hot.
1: कभी प्यार का एहसास और कभी खुद को दिया हुआ एक खूबसूरत तोहफा. फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स इज बैक एट तनिष्क. रोज पहनने के लिए स्टाइलिश डिजाइन हो या किसी खास मौके के लिए स्टनिंग डायमंड ज्वेलरी, हर पीस में है तनिष्क का भरोसा और बेहतरीन क्राफ्ट्समैनशिप. यही नहीं, गेट अ फ्री गोल्ड कॉइन ऑन एवरी 3000 रियाल्स स्पेंट ऑन डायमंड परचेसेस. तो आज ही विजिट करें तनिष्क एट लुलू हाइपरमार्केट, रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी टुडे. Supply.
2: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
3: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
4: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
5: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
6: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
3: The mentalist Suhani Shah, live in

0: कम जिंदगानी, लेकिन हमारे साथ आपके साथ होगी बहुत कहानी। दोस्तों आ रही है सुहानी, यस वो मेंटलिस्ट जिसने दुनिया भर में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के दिमाग को हिला कर रख दिया, वो हमारे कतर में आ रही है। टिकट्स बुक कर लीजिए स्नूनु सिटी पर, जहां पर आपको इस वक्त अलीबर्ड ऑफर मिल रहा है। फिलहाल मेरे सवाल के जवाब देने की बारी आ गई है, और सवाल आज बड़ा ही सिंपल सा किया है। हाँ जी, एक सवाल जो मैंने आपसे किया है आज, वो इस बात को लेकर है कि आपको बताना है हमारे बर्थडे बॉय बोले तो सुनील ग्रोवर साहब और अक्षय कुमार एक साथ किस फिल्म में नजर आए थे, और यही आज मैंने सवाल किया है बॉलीवुड के सरप्राइज टेस्ट में। जवाब आ गए, आइए सुनते हैं।
1: गुड इवनिंग रेडी मिर्ची, द सुनील ग्रोवर एंड अक्षय कुमार, द मूवी नेम इज गब्बर एंड मिर्ची इज हॉट, माय नेम इज प्रशांत असोडिया।
2: बोलो, गुड इवनिंग, होप यू आर फाइन, आप अच्छे होंगे, आपका रेडियो चैनल बहुत अच्छा है। सुनील ग्रोवर ने जिस मूवी में अक्षय कुमार को पकड़ा था वो है गब्बर इज बैक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, दिस इज राशिद।
3: ओके राशिद भाई, हाय सर, माय नेम इज गब्बर इज बैक।
4: अरे दौरव भाई, जो मूवी का नाम आप पूछ रहे थे अक्षय कुमार और सुनील ग्रोवर की, उस मूवी का नाम है गब्बर इज
0: बैक। ओके, और कौन है?
5: अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, मेरा नाम जब्बार खान है सर, फिल्म का नाम है गब्बर।
0: अरे सब्बर भाई, इतनी जल्दी एक सुर में बोल दिया भाई, सबने सही बताया है, लेकिन कुछ लोगों ने लिख के जवाब बताया है, कहे गौरव भाई किसी मजबूरी के चलते रिकॉर्ड नहीं कर पाए हैं। तो चलिए जी, उन लोगों के नाम भी मैं लेना चाहूंगा यहाँ, इस्माइल भाई को थैंक यू कहना चाहूंगा दिल से। इसके अलावा एक और नाम, वॉइस नोट पॉसिबल नहीं है, जाकिर भाई थैंक यू सो मच जिन्होंने इसका जवाब दिया है। इसके अलावा थैंक यू चाहेंगे सुनील को जिन्होंने लिखा है सुनील ग्रोवर एंड अक्षय कुमार फिल्म, यस गब्बर इज बैक। गब्बर इज बैक लगाना बहुत सारे लोग भूले, अमन आप भी भूल गए, आपने भी गब्बर लिख दिया है, गब्बर इज बैक इज द राइट आंसर। एंड मस्त मौला गौरव के साथ सुनते रहिए। It's hot.

अगर मिल गई तो आप भी मुस्कुरा देंगी जब वो आपका कोई सीक्रेट बता देगी। यस, तू मिल गया जुबिन नौटियाल, तुलसी कुमार की आवाज में गाना सुना दिया। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपके दिमाग में आपके पुराने एक फ्रेंड जिससे आप बहुत प्यार करते थे, उसका नाम नहीं भी आया लेकिन किसी ने अगर गेस कर दिया है तो कैसा लगेगा। सोचिए, मतलब वो आपसे कह रहा है कि थिंक ऑफ योर एक्स और आप नहीं सोचना चाह रहे, फिर भी उसे पता लग जाए तो कैसा लगेगा। ऐसा हो रहा है भैया, एंड ये करती है स्वानिशा। ट्रस्ट मी, एक शानदार कमाल की आर्टिस्ट इज कमिंग टू कतर, दी मेंटलिस्ट स्वानिशा, प्रेजेंटेड बाय आईपे, लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम, एंड 25 सितंबर की शाम होने वाली है। जबरदस्त सुहानी, क्योंकि खुद आ रही है सुहानी। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे कोड्स क्रैक कैसे होते हैं ये देखें, इसको समझें, तो उसके लिए आपके पास मौका है 25 सितंबर को QNCC में होने वाला है दी सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। तो टिकट्स बुक कर लो स्नूनू सिटी, यानी गेस्ट सिटी पर जाकर स्नूनू पर ये टिकट्स अवेलेबल हैं राइट नाउ। अर्ली बर्ड ऑफर इज गोइंग ऑन, बट याद रखिए लिमिटेड सीट्स है। अब वो अर्ली बर्ड ऑफर खत्म हो गया, गौरव कोई जुगाड़ यार अर्ली बर्ड वाला दिलवा दो। हम तो अभी बता रहे हैं, अभी कर लो ना, बाद के जुगाड़ के चक्कर में पड़ो ही मत। अभी जो करेगा वही फायदे में है, ये मैं कह सकता हूं इस उम्मीद के साथ कि आपने अपने नाम एक शाम कर लिया। एंड दैट इज 25 सितंबर की शाम। हम आगे बढ़ते हैं जिंदगी तेरे नाम लेके विशाल मिश्रा की आवाज में। इट्स हॉट।

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: The mentalist Suhani Shah, live.

0: अर्जन वैली भूपेंद्र बब्बल की आवाज में ये पंजाबी फोक सॉन्ग सुनाया किसने?
1: मस्त मौला गौरव।
0: ये गंडासी मारी तो हो गया, लेकिन मस्त मौला गौरव के साथ आपसे ढेर सारी बातें मारते हैं। एंड इन सब के बीच हम आपको बताना चाहते हैं कि एक बड़ी आग को आज हमारे कतर की सिविल डिफेंस फोर्सेस ने बचाया है। यस, एक बड़ी आग जिसकी रिपोर्ट आई कि अल रहया एरिया जो अलखोर सिटी के पास है वहां पर बड़ी आग लगी है, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया है। थैंक यू टू आवर सिविल डिफेंस टीम जो राइट टाइम पर पहुंची और ये पूरी आग पर काबू पाया। एंड बड़ी बात यह है कि इस दौरान किसी को भी इंजरी नहीं हुई है। ये बताता है कि हमारे कतर में ये जो सिविल डिफेंस फोर्सेस हैं वो कितनी अलर्ट रहती हैं एंड राइट टाइम पर पहुंचकर उस आग पर काबू पा लिया। एंड हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमें सस्ती क्वालिटी की बिजली की तारों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। ये समर टाइम में अक्सर होता है कि घरों में यू नो लो क्वालिटी के वायर्स लग जाने से ये प्रॉब्लम आती है। कभी कभी आप जो एक्सटेंशन कॉर्ड लगाते हैं वो बड़े ही सस्ते का होता है और वहां पर शॉर्ट सर्किट के चांसेस होते हैं क्योंकि गर्मी ज्यादा है। थोड़ा ध्यान रखिए इन बातों का, कोशिश कीजिए ऐसी चीजों से थोड़ा दूर ही रहें। एंड बिल्कुल खराब क्वालिटी की किसी भी चीज को खरीदने में आप पैसे तो बचा लेते हैं लेकिन अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा रिस्क पे लगा देते हैं, इस बात को भी समझिएगा। आई होप समर टाइम में थोड़ा ध्यान रखिए अपना। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कुणाल खेमू एज एन एक्टर, आपको डायलॉग्स याद रखने पड़ते हैं, आपको स्क्रीन प्ले याद रखना पड़ता है. एज ए ह्यूमन बीइंग, आपको आपके सपने याद रहते हैं?
3: मुझे एक्चुअली आई एम सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम दैट आई डोंट रिमेंबर माय ड्रीम्स. मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते. तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की.
2: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते. हर दिन की नई शुरुआत. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: only on Mirchi, it's hot.

0: शाम शानदार ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। कतर में बॉलीवुड का मिर्ची वाला तड़का, इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल,
1: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तबाही।

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: भाई टॉक्सिक फिल्म का ये गाना तबाही, मुझे मर्डर फिल्म के गाने भीगे होठ तेरे वाली फीलिंग देता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप नहीं समझ पाएंगे ना मेरी बात से कुछ अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। शाम के 7:04 इसी बहाने ढूंढने जाएंगे।
2: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.
1: चले जी इन सब के बीच बस पौरा गौरव 7 की कुछ बड़ी बातें लेकर आपके पास आ गया है। सबसे पहले एक अच्छी बात ये कि हमारे सिविल डिफेंस ने एक बड़े फायर को रोका है अलखोर सिटी में। यस, नो इंजरीज वर रिपोर्टेड और सिविल डिफेंस कतर ने एक तरह से एक बड़ी आंख को बचाया जो कि अल रिहैया एरिया में लगी थी अलखोर सिटी में, वहां पर कोई इंजरी नहीं हुई है, यह भी एक अच्छी बात है। इन सब के बीच नेशनल साइबर सिक्योरिटी कंपनी ने, यस कतर साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ने हम सबको वार्न किया है कि हमें अपने बोर्डिंग पासेस जो एयरपोर्ट पे जाके आप फ्लॉन्ट करते हो ना, ये देखो हमारा बोर्डिंग पास, हम फलानी जगह जा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। सोशल मीडिया पे इसे बिल्कुल मत लगाइए, बचिए ये करने में, क्योंकि एजेंसी का मानना है ये इन्फॉर्मेशन आपको एज अ ट्रेवलर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेवल डिटेल्स के साथ एक्सपोज करती है एंड आप आगे आने वाले टाइम में हो सकता है शिकार बन जाए कुछ लोगों का जो आपके साथ स्कैम करना चाहते हैं। तो इस छुट्टी वाले वेकेशन वाले हैप्पी मोमेंट्स को आप किसी तरह के प्रॉब्लम मोमेंट्स में मत बदलिए। इसके लिए उन्होंने कहा है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शेयर मत कीजिए, किसी तरह का बोर्डिंग पास सोशल मीडिया पर मत लगाइए। वैसे क्या पता आप यहां लगा रहे हैं लेकिन कोई घात लगाए बैठा है कि ये जाएगा और हम इसके चीजों को उठाएंगे। फिलहाल इसी उम्मीद में कि आप इस बात की सीरियसनेस को समझेंगे। आगे बढ़ते हैं आखिरी घंटे की तरफ एंड सुहानी शाह शो की टिकट्स बुक करते रहो सुनो सिटी पर, जहां पर इस वक्त अलीभर ऑफर चल रहा है 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na virbala burka. Mirchi burka.
2: हेलो,
3: कहाँ पे है यार? हेलो हेलो, ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या? हेलो बोल रही है यार,
2: hello?
3: कोई कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो, मैंने माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत, कम से कम बात मेरी सुन, मेरी बात सुनो।
2: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ, आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
3: ये एक सेकंड, तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ?
2: क्या अब आप पागल हैं क्या?
3: पागल आप हैं
2: थे क्या? पता नहीं क्या है, अपनी बोले चले जा रहे थे।
3: बोले चले जा रहे, बकवास कम करिए आप। किधर भाग गया?
2: हेलो,
3: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया, मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना, बड़ी मुश्किल से मिलता है।
4: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने, मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
3: आज के बाद घर से आ गई ना तो मैं बता दूं तेरे को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Enjoy the golden days with Kalyan Jewelers. Enjoy 0% making charges on selected ornaments. Visit Kalyan Jewelers today to grab this limited period offer. Conditions apply.
7: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
8: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
9: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 89.6 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
12: The Mentalist Suhani Shah live

0: से आंख मिलाएंगे तो क्या पता आपके सारे कोड्स क्रैक हो जाएंगे। क्योंकि मेंटलिस्ट लोग ऑब्जर्व कर बहुत ही ध्यान से आपको रीड कर सकते हैं। और ऐसे ही कुछ करने आ रही है दी मेंटलिस्ट वाहनिशा लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। ये लेकर आ रहा है मिर्ची मौका आपके साथ, प्रेजेंटेड बाय आई पे, हमारे एसोसिएट पार्टनर डी क्यू यानी कि डेरी क्वीन एंड पापा जॉन्स, हमारे रेस्टो पार्टनर एब्सोल्यूट बारबेक्यू, इवेंट पार्टनर क्यूब इवेंट्स, सोशल मीडिया पार्टनर बोले तो मीडिया पार्टनर रिहाब मीडिया, इसके अलावा थैंक यू कहना चाहेंगे सिम्फनी को जो प्रोडक्शन पार्टनर एंड ब्रांड एडवर्टाइजिंग पार्टनर ब्रांड आर्ट्स, ये सब के सब एक साथ आए हैं ताकि सुहानी शाह का वो जादू जो अब तक आपने सिर्फ वीडियोस में देखा है वो डायरेक्ट सामने से सामने खड़े होकर देखोगे उसे परफॉर्म करते हुए। हालांकि मेंटलिस्ट को लोग मैजिशियन बोलते हैं, मैजिशियन कहते हैं, मैं मेंटलिस्ट भी हूं, लेकिन मेंटलिस्ट मैजिशियन के साथ साथ आंखों से, दिमाग से, बहुत सारी चीजों से आपके बहुत सारी थिंकिंग को पकड़ सकते हैं। ये खूबी उन्हें ऊपर वाला देता है। एंड ऐसे में इंडिया की सबसे बेहतरीन मेंटलिस्ट सुहानी शाह हमारे कतर आ रही हैं। एंड अगर अभी तक आपने इनको नहीं जाना है, नहीं समझा है, वीडियोस चेकआउट कीजिए सोशल मीडिया पर जाकर, यू विल कम टू नो। मिर्ची वन कतर के इंस्टाग्राम हैंडल पर हमने वीडियो लगा दिए, देख लो। दुनिया भर के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को हैरान कर दिया है। एंड बड़े बड़े न्यूज चैनल्स पर जाकर, यहां नहीं फॉरन मीडिया के न्यूज चैनल पर जाकर, वहां के एंकर्स को सरप्राइज किया है सुहानी ने और वो हमारे कतर आ रही है। सो हमारा तो बनता है भाई कि हमें इनको देखने जाना ही है। टिकट्स बुक कीजिए एससीटी बोले तो स्नूनू पर, जहां पर अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। एंड एक बार ये मौका निकल गया तो फिर पछताओगे, बड़ा पछताओगे, तो इसलिए पछताना पड़े, उसके लिए जल्दी जल्दी टिकट बुक करो। एंड कीप लिस्निंग मिर्ची, थैंक यू टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स स्पेशली आई पे
1: इन एसोसिएशन विद डेयरी क्वीन, बीट द हीट विद ओरियो स्ट्रॉबेरी Choco Blizzard at Dairy Queen and Papa John's. Enjoy double delight offer. Two small pizzas at 44, two medium pizzas at 66, two large pizzas at 99 rial. Papa John's, better ingredients, better pizza.
2: Restaurant partner Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner Brand Arts.
3: Visual Media Partner, Rehab Media.
2: Production Partner, Symphony.

0: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
1: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
2: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
3: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
1: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
4: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
1: घर बैठे चाहिए नया कार्ड? Smart choice है Oriru Money Card. Apply करो आज ही और Q-Post से पाओ doorstep delivery कहीं भी in Qatar. Activate करते ही shopping करो local या international. और सुनो, हर application पर जीत सकते हैं एक brand new iPhone 17 Pro Max. Late मत करो. Order your Oriru Money Card straight away. TNC apply.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: एक शॉर्ट ट्रिप पे ओमान से लालावला जाना चाह रहे हो, एक खुशखबरी दे देते।
1: मस्त मौला गौरव
0: हम आपको बताना चाहते हैं कि ओमान ने 14 डेज के लिए अपने यहाँ एंट्री वीजा रिक्वायरमेंट जो है उससे लोगों को एग्जेम्प्ट कर दिया है। और ऐसे एक दो देश नहीं है, 100 कंट्रीज एंड टेरिटरीज हैं जिनके लिए एंट्री वीजा रिक्वायरमेंट अप टिल 14 डेज उससे एग्जेम्प्ट कर दिया है ओमानी गवर्नमेंट ने। एंड बड़ी बात यह है कि ओमानी अथॉरिटीज का मानना है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में टूरिज्म को बढ़ावा देगा, लोगों की विजिटर्स की जो सर्विसेज है उसको अच्छी फील देगा, एंड इसी के लिए उन्होंने ये फैसला उठाया है। 100 से देश जो है ऐसे देश है 100 जहां पर आपको अप टिल 14 डेज एग्जेम्प्ट किया जाता है किसी भी एंट्री वीजा रिक्वायरमेंट के लिए। लेकिन इसके लिए कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं एंड उन कैटेगरीज में जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना है। एंड कुछ कंट्रीज यानी कि जैसे हमारा इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, हमें सेकंड ग्रुप में रखा गया है। इसमें हमारे पास इधर वैलिड वीजा होना चाहिए, रेसिडेंसी परमिट होनी चाहिए यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके या शेंजन कंट्री की, जापान की, या फिर आप गल्फ के रेसिडेंट्स होने चाहिए यानी कि जीसीसी काउंसिल के जो भी देश हैं आप उसके अगर रेसिडेंट हैं तो आप भी इस वीजा फ्री 14 डेज वाली चीजों में आएंगे। वेल, ये 100 से ज्यादा देशों के लिए किया गया है एंड आई एम श्योर एक बड़ी मुहिम जो आने वाले दिनों में आपकी हमारी छुट्टियों के लिए कुछ तो बढ़िया लेकर आएगी। इन सब के बीच मस्त मौला गौरव इतना ही कहेगा, 25 सितंबर को अपने काम से छुट्टी ले लो, आपको आना है QNCC जहां पर लेकर आ रही है सुहानी द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। टिकट्स यू कैन गेट इट राइट नाउ एट SCT यानी कि स्नूनू पर, जल्दी बुक करो, अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। मस्त मौला गौरव के साथ ये घंटा आगे बढ़ रहा है मिर्ची इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: अरे यार कोई एसी चला दो यार।
2: सही है सही है।

और ज्यादा अब बढ़ेगी ह्यूमिडिटी के साथ। यस, इतने दिनों से जिस चीज से आप डर रहे थे और कह रहे थे अभी ह्यूमिडिटी उतनी नहीं हुई, ह्यूमिडिटी नहीं हुई है, अब QMD बोले तो कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने हमसे कहा है कि एक्सपेक्ट कीजिए इस वीकेंड आते आते तक जबरदस्त ह्यूमिडिटी लेवल्स बढ़ने वाले हैं। एंड मैं इतना ही कहूंगा, आज 35-40 के आसपास है, मतलब ये और जंप करेगा, डबल तक जा सकता है। ऐसे में वेदर फोरकास्ट यही कह रहा है, अगस्त 3 की शाम के बाद से ही एंड ऑफ द वीक आपको ऐसा लगेगा कि बड़ा मिस्टी फॉगी हो रहा है शाम को, लेकिन ये मिस्टी फॉगी असल में जबरदस्त तरीके से ह्यूमिडिटी लेकर आएगा। जो लोग ग्लासेस पहनते हैं, चश्मे पहनते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनके लिए थोड़ी मेहनत और होगी, बार बार चश्मे को पोंछना, जब भी वो एसी से बाहर निकलेंगे तो उन्हें ये काम करना पड़ेगा। इस उम्मीद में कि अब गर्मी बढ़ेगी, लेकिन हम पानी पी पी कर इस गर्मी को हराएंगे। मस्त मौला गौरव ले रहा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से शाम शानदार में, लेकिन जाते जाते याद दिला रहा हूं दी मेंटलिस्ट शिवानी शाह लाइव इन खतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जिसके टिकट्स आप बुक कर सकते हो एस सिटी स्नूनू पर, जितनी जल्दी हो सके कर लो, अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। बाद मत कहना गौरव भाई कोई जुगाड़ है क्या, अभी है, डायरेक्ट जाके बुक कर लो। 89.6 मिर्ची 1 मां सलामा हबीबी मिर्ची इज हॉट।

0: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
1: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
2: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
0: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
1: अबे ओए, तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
2: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
3: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: द शो स्टार्ट्स इन
5: हर फ्राइडे बॉलीवुड के लिए इज अ न्यू स्टार्ट, एक नई कहानी, लेकिन हर कहानी नई याद बन के नहीं रहती, और शायद इसलिए आज हम एक अजीब ईरा में जी रहे हैं। फिल्में भी वापस आ रही हैं, कैरेक्टर्स भी वापस आ रहे हैं, सॉन्ग्स भी वापस आ रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को भी पता है यादें बनाना उन्हें दोबारा बेचने से कई ज्यादा मुश्किल होता है। ऑगस्ट शायद इसी सवाल का जवाब लेकर आ रहा है। You got toxic, you got आवारापन, you got बंटवारा 1947। तो क्या 2026 सिर्फ हिट्स देगा या फिर हमें कुछ ऐसी फिल्में और गाने भी देगा जिनके बारे में हम 10 साल बाद भी बात करेंगे। इसी होप के साथ वेलकम टू द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का डेफिनेटिव बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन, एंड आई एम सुरेन सुंदरम।
6: नंबर 20।

0: a banger by Jasmine Sandlers on number 20 from Dhurandhar. Aur number 19 par debut kar raha hai आंखों से तूने ये क्या कह दिया, एक ऐसे गाने का रीमेक। इसके ओरिजिनल वर्जन को किसी मेकओवर की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अब मजेदार बात यह है कि ये जो फिल्म है भाई तेरा स्टार है, उसके अंदर हीरो राघव जुयाल डायरेक्टर से खुद पूछते हैं क्लासिक गाना रीमेक क्यों कर रहे हो, और जवाब मिलता है रिकॉल वैल्यू। बस अफसोस इतना सा है, रिकॉल तो सिर्फ ओरिजिनल का रह जाएगा, नया वर्जन सिर्फ उसकी डीजे मिक्स कॉपी बन के रह जाएगी। फिर भी काउंटडाउन पर उसकी जगह बन रही है। दिस इज आंखों से तूने क्या कह दिया फ्रॉम भाई तेरा स्टार है, स्टारिंग राघव जुयाल। इस हफ्ते गाना नंबर 19।
1: नंबर 19।

0: you want to play. Fall in line, little boy, because you can't run away. There's nowhere to hide. There's nowhere to go. I've shattered the ceiling. There's blood on the floor. A fight to the finish. Or a kiss goodbye. Get your last wish, baby, because you're gonna die.
1: Have you noticed? जब जज्बात बहुत बड़े हो जाते हैं तो लोग बोलना कम कर देते हैं, गाने चला देते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत सारी आवाजें सुनी, बहुत सारे नारे सुने, लेकिन एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया। हर जगह वही तीन गाने सबको सुनाई दे रहे थे, एक जो इस देश की पहचान बन गया है,

दूसरा जो हर मुश्किल घड़ी में इस देश को मोटिवेट करता है। और फिर ये तीसरा और आखिरी गाना जो अपने अंदर की आवाज को झंझोड़ता है। सोचिए, ये तीनों गाने आज के नहीं है, 2 दशक से ज्यादा पुराने हैं। फिर भी जब इस जेनरेशन को अपनी फीलिंग्स को आवाज देनी थी, इन्होंने कोई नया गाना नहीं ढूंढा, वापस इन्हीं गानों तक लौटाए। एक बार जो गाना आवाज बन गया, उस आवाज को दबाना मुश्किल होता है। हर जेनरेशन उन्हीं गानों को अपना लेती है जो उनके इमोशंस को उनसे बेहतर समझ ले। इस हफ्ते मेरा रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक एआर रहमान की वो कॉम्पोजिशन, इसने हर बार एक नई जेनरेशन के साथ फिर से जन्म लिया, फिर से उस पीढ़ी की आवाज बनी। टॉप 20 रीवाइंड।

0: ब्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो
2: कहाँ पे है यार। हेलो हेलो ऐसे नाराज होके जाते हैं क्या। हेलो बोल रही है यार।
1: Hello?
2: कोई तो तमीज होती है। मैंने माना मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है। अबे गई कहाँ पे है? मेरी बात सुन क्या। हेलो हेलो मैंने Hello? माना चल रात में झगड़ा हो गया थोड़ा बहुत कम से कम बात मेरी सुन मेरी बात सुनो।
1: अरे आपको कोई गलत फहमी है, मैं आपकी वाइफ नहीं बोल रही हूँ। आपसे शायद गलत नंबर लग गया है किसी का।
2: ये एक सेकंड तो पहले नहीं बोल सकती थी जब फोन उठाया कि वाइफ नहीं बोल रही हूँ
1: क्या। अब आप पागल है क्या।
2: पागल आप है
1: थे क्या। पता नहीं क्या है अपनी बोले चले जा रहे थे।
2: बोले चले जा रहे बकवास कम करिए आप। किधर भागी है।
1: हेलो
2: एक तो मेरे से दूर जाके मेरे को धोखा दिया। मेरी वाइफ बन के ऊपर से फोन काट दिया। फोन मत काटना बड़ी मुश्किल से मिलता है।
3: मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने आपका मुर्गा बनाया सौम्या, आप बुरा ना माने मुझे किसी ने अब मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए।
2: आज के बाद घर से आ रही ना तो मैं बता दूं तेरे को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट। आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट।
8: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये।
6: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
9: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
6: The mentalist Suhani Shah.

0: बस यही तो कमाल है हिंदी फिल्म म्यूजिक का। कुछ सेकंड पहले तक आरी आरी जैसे गानों के साथ खून तेजी से दौड़ रहा होता है, आपके अंदर इतना एड्रेनलिन भर जाता है कि लगता है कि दुनिया जीत लोगे, और अगले ही पल अगला ही गाना उसी दिल को धीरे से पकड़ लेता है, और आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आवारापन का वो गाना जिसका इंतजार सिर्फ फिल्म के फैंस नहीं पूरा म्यूजिक सर्किट कर रहा था, इस हफ्ते वो काउंटडाउन पर जरूर डेब्यू करेगा। तो बस प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले आई नीड टू से दिस दैट आई लव अमाल मलिक। He's like my younger brother, और अमाल की कही हुई एक बात मेड मी फील सो सो प्राउड अबाउट हिम।
1: I'm the SRK of music and romance, who I believe another who soul travels just like me is Mithun. I think an R, like mere senior hai, but he's the only one I feel. And I'm har jagah aisa bolta hu, and egoistically nahi ki I'm the SRK of music and romance. Main hu, so I believe the best. But someone who always hum log mein ek yani competition nahi rahega, but I think someone who touches my soul on that level is him. Wo utni purity se he also works. So we are the only two people who are trying to do in our generation purest work.
0: यार कितनी खूबसूरत बात है। हर कंपोजर का अपना एक सिग्नेचर होता है, अपनी एक मेलोडी होती है, अपना एक इमोशन होता है, और जब एक कंपोजर दूसरे कंपोजर की सोच को इतनी इज्जत दे तो समझ लीजिए म्यूजिक सिर्फ कंपटीशन नहीं कॉन्वर्सेशन बन गया है, और इस कॉन्वर्सेशन का नया चैप्टर आज ऑफिशियली शुरू होता है ऑन द चार्ट्स, डेब्यूइंग स्ट्रेट ऑन नंबर 9। रश्मि विराग के लव्स, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन और अरिजीत सिंह की आवाज, ये आरापन नंबर।

0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है। सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है। Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah live.

0: in association with Dairy Queen. Beat the heat with Oreo Strawberry Chocolate Blizzard at Dairy Queen and Papa John's. Enjoy Double Delight offer. Two small pizzas at 44, two medium pizzas at 66, two large pizzas at 99 Rial. Papa John's, better ingredients, better pizza.
1: Restaurant partner, Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues today. Printing and advertising partner, Brand Arts.
2: Visual media partner, Rehab Media.
1: Production partner, Symphony.
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
4: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है,
5: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट.
7: Only on Mirchi. It's hot. Number 6.

शरारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ पता क्या है? मधुमंती बागची और जैस्मिन सैंडलर्स की आवाज नहीं, उसका मुखड़ा भी नहीं। इस गाने की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्ट्रेंथ है, उसके वो पहले कुछ सेकंड्स जहाँ गाना बस शुरू होता है और आपका दिमाग तुरंत बोलता है, ओह यस, दिस इज शरारत।

Am I right or am I right? यार मुझे लगता है कि म्यूजिक की दुनिया चुपचाप बदल रही है। आज गाने का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा उसका हुक बन गया है, क्योंकि वही रील्स पर और शॉर्ट्स पर ट्रेंड करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, द कंपोजर्स गाने में सबसे ज्यादा प्यार उसकी शुरुआत पर खर्च करते थे। एक इंट्रो जो बिना एक भी लफ्ज बोले अपनी पहचान बना लेता था।

बस इतना ही, ना वोकल्स ना लिरिक्स। फिर भी अगर आप 2008 में थे तो आपको पता था हाथू है। शायद इसलिए कुछ इंट्रोस सिर्फ म्यूजिक नहीं होते, वो मेमोरी के फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। एक बार सुन लो और सालों बाद भी इसे पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। वैसे ही इस हफ्ते नंबर 4 पर जो गाना है, उसकी पहचान भी उसका इंट्रो ही था, चुनरी चुनरी। लेकिन जिस गाने की हम इतनी बात कर चुके हैं, जिस गाने का मैं इतना जिक्र कर चुका हूं, दैट इज गोइंग टू बी माय पिक ऑफ द वीक। जन्नत की पूरी एल्बम में शायद सबसे अंडररेटेड ट्रैक, लेकिन मेरे लिए सबसे प्यारा। वही इंट्रो जो दिल पर अब भी दस्तक दे रहा है, सॉन्ग बाय माय ऑल टाइम फेवरेट सिंगर के प्रीतम दा की धुन। हाँ, तू है।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन का नंबर है।
1: बहुत दिक्कत है सर, एक हाथ से सैलरी आती है और दूसरे हाथ से चली भी जाती है, क्या करूं समझ ही नहीं आ रहा।
2: अबे ओए। तो दूसरे हाथ को काट कर फेंक दो, फिर सैलरी जाएगी नहीं।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

और दूसरी हिट फिल्म का सीक्वल आ चुका है वेलकम धमाल दे दे प्यार दे. देन यू आल्सो गॉट सम कल्ट क्लासिक्स लाइक बॉर्डर एंड गदर. एंड लगता है कि बॉलीवुड को एक ही चीज का नशा है एंड दैट इज फ्रेंचाइजेस. लेकिन इतने सारे सीक्वल्स के बीच एक नाम है जिसकी कमी हर साल और ज्यादा महसूस होती है और छुपती है. धूम जैसे फिल्म कहां थी, ये स्टाइल था, एटीट्यूड था. पहली धूम में जॉन अब्राहम ने बाइक्स को कूल नहीं बनाया, उन्हें एस्पिरेशनल बना दिया. सबको एक सुपर बाइक चाहिए थी. फिर आए ऋतिक रोशन और धूम 2 ने फ्रेंचाइज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया. डूड ऋतिक नेवर लुक्ड एज सेक्सी एज ही डिड इन धूम 2. एंड उसके बाद 7 साल बाद सिर्फ खामोशी. यस, आमिर खान की धूम 3 आई जरूर, लेकिन वो दीवानगी वापस नहीं आई. और हाल फिलहाल आप सुन रहे होंगे कि इस सीरीज को रीबूट करने की प्लानिंग चल रही है. रणबीर कपूर का नाम डिस्कस हो रहा है, फिर ये पता लगता है दैट स्क्रिप्ट की वजह से रणबीर भी एग्जिट कर गए. सच कहूं, मुझे नए विलन की बिल्कुल फिक्र नहीं है. मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जिस फ्रेंचाइज ने हिंदी सिनेमा को इतना स्वैग और इतना कूल दिया, उसे सिर्फ कमबैक नहीं, ब्लॉकबस्टर कमबैक मिलना चाहिए. सो YRF, टेक योर टाइम, जितना वक्त लेना है आप ले लो, बस धूम को स्पाई यूनिवर्स वाले रास्ते ना ले जाना. तब तक YRF का दिया एक और सुपरस्टार जिसने शुरुआत की थी विद बैंड बाजा बारात, आज बॉक्स ऑफिस पर सबकी बैंड बजा रहा है. एक बार फिर माय मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग ऑफ लास्ट ईयर इज स्टिल नंबर 1. दिस इज गहरा हुआ स्टारिंग रणवीर धुरंधर सिंह. नंबर 1.

0: एक और हफ्ता और गैरा हुआ फिर से नंबर वन। सच कहूं लगता ही नहीं कि धुरंधर का मैजिक बिल्कुल फेड हुआ है। इस एपिसोड में वैसे मुझे बहुत मजा आया, मेमोरीज की बात की, नई ट्यून्स की बात की और उन कहानियों की भी जो सिर्फ फिल्मों में नहीं हम सबके अंदर रहती हैं। आई होप यू लाइक द एपिसोड एज वेल। अगली बार फिर मिलेंगे हियर ऑन द मिर्ची टॉक 20। अंटिल देन सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 89.6 89.6 मिर्ची।

अच्छा, पहली मुलाकात कैसी होती है? ऐसी ही तो होती है, थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ा एक्साइटमेंट। पुरानी जीन्स पे हाय, दिस इज मी श्रेया। पहली मुलाकात है तुम्हारी और मेरी, बट आई प्रॉमिस कि ये लंबी चलने वाली है, क्योंकि हम दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट है और वो है उस जमाने के गाने। तो उस जमाने के गानों के साथ उस जमाने की बातें भी मिलेंगी, लेकिन हाँ, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, जब तुम पहली बार किसी से मिलते हो, पहली बार कोई इंटरव्यू देते हो, पहली बार कोई कंपटीशन क्रैक करते हो, या जिंदगी में पहली बार जब जब जो जो होता है ना, वो बहुत ही खास हो जाता है। तो अभी कुछ गाने सुन करके वापस आओ। आज मैं बताऊंगी जब पहली बार बड़े बड़े रेट्रो स्टार्स ने, उस जमाने के एक्टर्स ने कैमरा जब फेस किया तो उनके साथ क्या हुआ। जैसे कि जब अमित जी ने ये अभी नहीं, ये गानों के उस पार। So come right back only on Purani Jeans.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: हेलो,
3: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
2: हाँ जी
3: यार, कमाल कर दिया आपने। जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी का, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
2: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
3: अरे फोटो आकर देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार। सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
2: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
3: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बका दिए यार, सारे दिमाग।
2: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
3: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
2: मैंने देखी खुद अपने हाथ से। सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
3: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
2: अरे शर्म की क्या बात है सर,
3: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार। तूने किया क्या ये?
2: किसी का
3: कपड़े गायब है? एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
2: लेंस लगाया नहीं।
3: क्या कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो। कपड़े
2: गायब नहीं
3: दीदी, मैं कल को
2: फोटो खींचे हुए।
3: अरे लेंस ऐसे
2: पूरे
3: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहन रखी थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी।
2: अरे
3: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
2: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
3: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
2: सर क्या बात, चुनके बनाया है?
3: कोई फोटो चुनके नहीं बनाया। मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू, उसका चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है। वो खड़ा है, जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है। ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
2: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे।
3: गड़बड़
2: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
3: यार। इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
2: दिखाइए
3: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार।
2: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए।
3: ऐसा सिस्टम है, एक जगह होता है।
2: कहाँ होता है बताइए?
4: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
6: कोई यहाँ आह नाचे नाचे

पुरानी जीन्स पर आप श्रेया के साथ, और ये आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स की पहली फिल्मों की बात की जाए जब दे फेस द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको पता है इनको अपनी पहली मूवी के लिए सिर्फ 5,000 रुपए मिले थे। तो क्योंकि आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, मैंने सोचा कि क्यों ना वो दिग्गज एक्टर्स के बारे में बात करें जिन्होंने जब पहली बार कैमरा फेस किया तो उनके साथ क्या क्या हुआ। पता है अमित जी को उनकी पहली फिल्म के लिए 5,000 रुपए मिले थे, और वो भी काफी नेगोशिएशन के बाद विद टीनू आनंद। अमिताभ बच्चन जी की पहली फिल्म थी सात हिंदुस्तानी, इसके लिए उन्हें पूरे 5,000 रुपए मिले और साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया, मूवी चाहे साल भर में बने या 5 साल में बने, और उस 5 साल के अंदर चाहे अमित जी जितने बड़े भी सुपरस्टार बन जाए पर सात हिंदुस्तानी के लिए उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, अपने धर्मपाल जी की पहली कौन सी फिल्म थी? नहीं पता तो मैं बताऊंगी ना। वापस आओ गाने सुन करके। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STD Snoonu. Book yours now.
2: The mentalist Suhani Shah.

धर्म पाजी के साथ पता है इस फिल्म में कोई भी काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि तब तक कोई उन्हें जानता ही नहीं था। और क्योंकि आज मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन फिल्मों की बात करें जिनसे पहली बार बड़े बड़े एक्टर्स ने, दिग्गज एक्टर्स ने अपने करियर की शुरुआत की थी। सो धर्म पाजी की पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। 1960 में ये फिल्म आई थी और उनके ऑपोजिट इस फिल्म में थी यस्टरडेज की एक्ट्रेस कुमकुम जी। तो धर्म पाजी ने उस टाइम पे मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि तब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती थी, इंटरव्यू में ये बोला था दैट ही विल ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू कुमकुम जी, क्योंकि उस टाइम पे ना और कोई एक्ट्रेस उनके साथ काम ही नहीं करना चाहती थी। धर्म पाजी एक न्यू फेस थे और जितनी पॉपुलर एक्ट्रेसेस थी वो किसी न्यू कमर के साथ काम करने में थोड़ा सा हिचकिचाती थी। तो ऐसे हुई थी धर्म पाजी की शुरुआत। अच्छा, और अपनी इस डेब्यू फिल्म के लिए धर्म पाजी को कितने सारे रुपए या फिर कितने से रुपए मिले, ये अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

छम छक छक लाते इसके धा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
2: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
1: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
3: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
4: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
5: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now. 7070-7687.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सत्रह सत्रह सत्रह और तीनों का मिला करके 51। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो मैंने सोचा कि हमारे जो दिग्गज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है ना हिंदी सिनेमा के, उनकी भी पहली पहली फिल्मों की बात करूँ। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि धर्म पाजी की पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। आपको पता है कि इस फिल्म के लिए उन्हें कितने रुपए मिले थे? वेल, ओनली रुपीज 51 रुपए। और ये भी किसी एक बंदे ने नहीं दिया था, इस फिल्म के तीन प्रोड्यूसर्स थे और उन तीनों ने मिलके 17-17-17 रुपए कंट्रीब्यूट करके धर्मपाजी की फीस निकाली थी। ऐसा धर्मेंद्र जी ने खुद एक रियलिटी शो में हाल ही में बताया था। सोचो 51 रुपीज, दैट्स इट। पुरानी जीन्स पर काका यानी राजेश खन्ना की डेब्यू फिल्म के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी। वापस आओ श्रेया के साथ।

इस फिल्म की वजह से जतिन खन्ना बने राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और क्योंकि आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उन मूवीज की बात की जाए जिससे अपना डेब्यू यानी पहली बार कैमरा फेस किया था हमारे दिग्गज रेट्रो स्टार्स ने। तो ये फिल्म थी जिससे जतिन खन्ना हमें आज राजेश खन्ना और प्यार से उन्हें काका कहते थे सब इन दी इंडस्ट्री, काका मिले थे। इस फिल्म का नाम है आखिरी खत जिससे अपना डेब्यू किया था राजेश खन्ना जी ने। अच्छा, अब उन्होंने अपना ये नाम क्यों बदला, इसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन था। वो क्या था इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा ना ऐसे आपको सस्पेंस में छोड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। तो गाने सुन करके वापस आओ पूरी कहानी ऑफ दिस नेम चेंज मेरे यानी श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हाँ, तो मैं बता रही थी कि कैसे जतिन खन्ना राजेश खन्ना बन गए अपनी डेब्यू फिल्म से, यानी आखिरी खत से। सो एक्चुअली हुआ ये कि जब राजेश खन्ना लॉन्च होने वाले थे इसी फिल्म से, उसके कुछ महीने पहले एक और जतिन खन्ना नाम के हीरो ने अपना डेब्यू किया था विद द फिल्म कॉल्ड जब जब फूल खिले। अब ये वाले जतिन खन्ना को लगा कि भाई सेम नाम तो नहीं हो सकता, इंडस्ट्री में सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उन्होंने अपना एक स्क्रीन नेम रखा। वो स्क्रीन नेम था राजेश, लेकिन वो सिर्फ राजेश के नाम से फेमस नहीं हुए, प्यार से तो इंडस्ट्री में क्या करते। देव साहब का डेब्यू कौन सी फिल्म से हुआ था? ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे एक वादा भी आया। ये पूरी कहानी बस कुछ गानों के उस पार। पुरानी जींस पर मेरा नाम है श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
3: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. Ladies and gentlemen, your mind is about to get blown because number one mentalist from India, the Suhani Shah, is coming to Qatar for the very first time. Catch her live on 25th September at QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at STT Snoonu. Book yours now.
6: Dosti kai kusule madam. No sorry, no thank you.
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए.
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
9: खूब मिलेगा, मिलेगा.
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

देव साहब की इस डेब्यू फिल्म से एक दोस्ती की शुरुआत हुई थी, दोस्ती बिटवीन हिम एंड गुरुदत्त साहब। हाय, मेरा नाम है श्रेया और पुरानी जींस पे आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पहली मुलाकात को थोड़ा और खास बनाए, कुछ ऐसी फिल्मों की बात करें जिससे हमारे रेट्रो स्टार्स ने अपना डेब्यू किया था। तो फिर इस लिस्ट में देव साहब का नाम तो आएगा ही। देव साहब की पहली फिल्म का नाम था हम एक हैं। देव साहब कैमरे के उस पार और कैमरे के इस पार असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका में थे गुरुदत्त साहब। दोनों के बीच में दोस्ती हुई। ये दोस्ती एक वादा भी लेकर के आई जिसको बहुत सच्चाई के साथ देव साहब ने निभाया। ये वादा क्या था आपको तो पता ही है, इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं बताती हूँ। तो उस जमाने के कुछ हैंडपिक गाने हैं, उनको सुन करके वापस आओ, फिर पूरी कहानी। आई प्रोमिस। यू आर लिस्निंग टू पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: कभी तो हंसाए।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आलिया, आपकी मम्मी सोनी राजदान बड़ी क्यूट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं राजी के सेट पे वर यू नर्वस और एक्साइटेड टू वर्क अलोंग विद योर मॉम, व्हाट वाज द फीलिंग?
5: यू नो, आई वाज वेरी नर्वस क्योंकि पहले तो मम्मी भी है, बट नंबर वन फर्स्ट माय को एक्टर ऑन सेट, वो मेरी पहली को एक्टर है, मेरी मम्मी नहीं बन सकती, तो मैं नर्वस थी क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नर्वस है तो मैं ज्यादा नर्वस हूँ। अगर उनको लाइनें शायद नहीं आते हैं तो मैं कैसे कहूंगी कि उनको नहीं आ रहा है, तो आई वाज लाइक मुझे ऐसा लगता है मैं दो लोगों के लिए एक्टिंग कर रही हूँ। मैं जब वो पहली बार सेट पे आई बट तब मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि वो एकदम बिंदास है, शी इज एक्चुअली एग्जैक्टली लाइक मी।
4: आलिया, वो आपके जैसी नहीं, आप उनके जैसी हैं। चिकन और एग, व्हाट केम फर्स्ट? मेरे हिसाब से चिकन। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: मिर्ची वन, इट्स हॉट।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव साहब की पहली फिल्म से ही एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जो उनके आखिरी समय तक चली। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन फिल्मों की बातें की जाए जिससे हमारे उस जमाने के दिग्गज स्टार्स ने अपनी शुरुआत की। अब अगर देव आनंद जी की बात करें तो उनकी डेब्यू फिल्म थी हम एक हैं। अब इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे गुरुदत्त साहब। दोनों के बीच में दोस्ती होती है और साथ में एक वादा आता है। वादा ये कि अगर कभी देव साहब आगे चल करके बड़े एक्टर बने और उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला तो उसके अंडर जो फिल्में बनेंगी उसको डायरेक्ट करने वाले होंगे गुरुदत्त साहब और एक्टिंग करने वाले देव साहब। ये वादा आगे चल करके देव साहब ने निभाया भी। जब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला ना नवकेतन फिल्म्स, उसके अंडर फिल्म बनी 1951 में बाजी। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले उनके दोस्त गुरुदत्त साहब बने। इंडस्ट्री में ऐसी भी दोस्ती होती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया। वापस आओ, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है।

शमी कपूर साहब मधुबाला जी की खूबसूरती से इस कदर इम्प्रेस थे कि वो बार बार अपने डायलॉग्स ही भूल जाते थे। और क्योंकि मैं आज आपको पहली बार मिल रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन फिल्मों की बात की जाए जिससे पहली बार कैमरा फेस किया हमारे बड़े बड़े दिग्गज स्टार्स ने। तो शमी साहब की पहली साइंड फिल्म जो थी ना, वो थी जीवन ज्योति। लेकिन रेल का डिब्बा वो फिल्म थी जिससे पहली बार उन्होंने कैमरा फेस किया था, क्योंकि उस फिल्म की शूटिंग जीवन ज्योति से पहले शुरू हो गई। अब रेल का डिब्बा में ना वो ऑपोजिट मधुबाला थे, और मधुबाला जी की खूबसूरती के बारे में अगर मैं कुछ कह दूं तो भाई, तो वो क्या कहते हैं कि दिए को रोशनी दिखाने जैसा कुछ हो जाएगा। शमी साहब वो सो स्मिटन बाय मधुबाला जी इस ब्यूटी कि वो बार बार अपने डायलॉग्स ही भूल जाते थे। फिर मधुबाला जी उनके पास जाती थी, उनको कंफर्टेबल करती थी, दोस्ती की कुछ लाइनें बोलती थी, तब जा करके रेल का डिब्बा शूट हो पाई। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कहीं अगर मधुबाला जी आंखों के सामने दिख जाती तो क्या हाल होता ना आपका और मेरा। पुरानी जींस पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, ब्लड प्रेशर चेक करो। हाँ ब्लड प्रेशर चेक करो उसका। इंजेक्शन मत दो उसको। वन सेकेंड। मिस्टर मनोज
4: जी बोल रहा हूँ।
3: मिस्टर मनोज मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे आ जाइए। मुझे पता चला आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसको डोनेट कर दीजिए, आके इसकी जान बच जाएगी।
4: कहाँ ना सर?
3: हॉस्पिटल प्लीज आप जल्दी आ जाइए।
4: टाइम बताएंगे कब तक आना है मुझे?
3: हाँ कितना दे सकते हैं मुझे ये बता दीजिए। आगे ले आओ,
4: मैं दे दूंगा।
3: 4 यूनिट दे दीजिए, इसकी जान बच जाएगी। इसके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान है।
4: 4 यूनिट?
3: नहीं सर मैं ब्लड की बात नहीं कर रहा हूँ मिस्टर मनोज, ब्लड नहीं चाहिए इसको। आगे ले आओ, अब आगे ले आओ उसको, आगे ले आओ। ब्लड नहीं चाहिए इसको। हाँ ब्लड नहीं
4: चाहिए
3: इसको, यूरिन की कमी हो गई है। आपका यूरिन चढ़ाना है, प्लीज जल्दी आ जाएंगे।
4: क्या चढ़ाना है?
3: यूरिन चढ़ाना है, इसका सारा यूरिन खत्म हो गया, प्लीज जल्दी आ जाइए यार यहाँ पे।
4: क्या चढ़ाना है? यूरिन चढ़ाना है।
3: मैं डॉक्टर खन्ना बोल रहा हूँ यहाँ से। असल में ये पेशेंट पहले से बहुत कमजोर दिल का आदमी था, ये रात को बाहर निकल गया। इसको मना भी किया था, पहले मैं इसका ट्रीटमेंट कर रहा था, इसको मना किया था कि बाहर अकेले मत जाया करो। ये बाहर गया, चौकीदार घूम रहा था, चौकीदार ने सीटी बजाई, इसने सारा निकाल दिया।
4: पेशाब निकल गया, मैं पेशाब
3: चढ़ाऊं? आपका ग्रुप मिल गया
4: सर। इसका यूरिन सर मैच होता है क्या? मतलब जैसे ब्लड मैच होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: कुछ यूरिन का भी कुछ होता है?
3: बिल्कुल बिल्कुल, ये मैच होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास सारी डिटेल है, 1 सेकंड रुकिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे
4: जी जी।
3: हाँ यहाँ पे ग्लोबल यूरिन डिटेक्टर लगे हुए हैं।
4: अच्छा,
3: तो आपका यूरिन और इसका यूरिन मैच हो गया है।
4: क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहा।
3: आप मुझे ये बताइए, अभी आपको प्रेशर बन रहा है, प्लीज जल्दी आ जाइए यार।
4: अभी तो सर लग नहीं रहा। 4 यूनिट अभी कैसे दे सकता हूँ?
3: अरे तो आप बाद में दे दीजिएगा, कम से कम आधा यूनिट तो दे दीजिए। और आप इतना वो परेशान मत होइए, आपका जो भी खर्च हो ठीक है, और आपका जितना निकलेगा
4: जी
3: वो हम चढ़ा देंगे आपके, आप फिक्र ना करें।
4: सर नंबर कहाँ मिला आपको?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, किसी को यूरिन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारा ही चढ़वाऊंगा। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, मैंने मजाक किया था।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
6: 89.6।
5: इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एज राइटर्स जब इनकी पहली फिल्म थी उसके लिए सिर्फ 5,000 रुपए मिले थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया, आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंडियन सिनेमा के कुछ लेजेंडरी स्टार्स की पहली पहली फिल्म, पहली पहली राइटिंग, पहली पहली कहानियां, इनके बारे में बात करूँ। सलीम जावेद, इनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज आई है विच इज ऑन नेटफ्लिक्स, जिसका नाम है द एंग्री यंग मैन। इस सीरीज में सलीम खान और जावेद अख्तर साहब दोनों ने बताया कि कैसे उनके पीक टाइम पे, जब उनकी सारी लिखी हुई फिल्म्स हिट हो रही थी, फिर चाहे वो शोले हो, जंजीर हो, हाथी मेरे साथी हो एंड सो मेनी ऑफ देम, दीवार हो, तब उन्हें फिल्म के एक्टर से ज्यादा यानी अमिताभ बच्चन जी और राजेश खन्ना जी से ज्यादा पैसे मिलते थे। 21 लाख रुपए वे बैक इन 70s और 80s। लेकिन जब उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी वो एक भूत की कहानी थी, इट वॉज अ गोस्ट स्टोरी, और उसके लिए इन दोनों को 5,000 रुपए मिले थे, यानी 2500 जावेद साहब के और 2500 सलीम साहब के। वहां से 21 लाख तक का सफर विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स काफी क्विक और थ्रिलिंग था। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ और किसके डेब्यू की कहानी बताऊंगी ये तो अभी नहीं, गानों के बाद।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं.
3: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कारपेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कारपेट?
4: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
2: उसे सब पता है. लेडीज एंड जेंटलमैन, योर माइंड इज अबाउट टू गेट ब्लोन बिकॉज नंबर वन मेंटलिस्ट फ्रॉम इंडिया द सुहानी शाह इज कमिंग टू कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. कैच हर लाइव ऑन 25th सितंबर एट QNCC.
5: Early bird tickets out now. Get them at SCD Snoonu. Book yours now.
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे.
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा.
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

शादी की पहली रात का ये गिफ्ट था, पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें, उस जमाने के गाने और इस जमाने की श्रेया के साथ। आज पहली बार मिल रही हूँ आपको, तो आई थॉट कि क्यों ना कुछ लेजेंडरी स्टार्स की पहले पहले चेक्स, पहले पहले सैलरीज के बारे में बात करूं। तो मैंने सबके बारे में बताया, अब मैं उनके बारे में बताने वाली हूँ जिनकी ये पहली सैलरी नहीं थी लेकिन शादी की पहली रात। शादी की पहली रात खूबसूरत मीना कुमारी और उनके शौहर कमाल अमरोही साहब। कमाल अमरोही ने उनको शादी की रात कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ जिससे पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगी, और वो तोहफा तुम्हारी खूबसूरती पे बनी एक फिल्म होगी। ये फिल्म बनने में 14 साल लग गए लेकिन कमाल अमरोही ने अपना वादा निभाया। उन्होंने मीना कुमारी पे बनाई पाकीज़ा, जिसे हर कोई आज भी याद करता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, गाने सुन करके कम बैक राइट हियर।

0: मुझे अपने सपने याद नहीं रहते, तो आई थिंक विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि मुझे नाइटमेयर्स भी याद नहीं रहते, तो आई कैन मैं एक नई शुरुआत करता हूँ हर दिन की।
1: क्लासिक फॉर्मूला है कुणाल खेमू, काश हम भी ऐसा कर पाते, हर दिन की नई शुरुआत। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Our business is our business, none of your business.
4: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment, entertainment. Qatar का number one radio station.
5: 89.6
6: FM, Mirchi 1. It's hot.

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स, यू वर लिस्निंग टू श्रेया और अब जाने का टाइम हो गया है। मैंने सोचा है कि जब भी मैं जाऊंगी ना तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी, तो चलो मेरी गाड़ी में बैठो एंड लेट्स हिट द हाईवे। सो इस हाईवे पे हम एक खास गाना कुछ खास लोगों के लिए सुनते हुए जाएंगे। तो ये हाईवे हिट उन लोगों के लिए है जो किसी से जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना तो ऑर्गेनिकली कुछ वाइब आती है, एक स्पेशल बॉन्ड बनता है, बिना कहे भी कुछ इमोशंस एक्सचेंज हो जाते हैं और फिर जब वो जाने लगते हैं ना तो आपका दिल कहता है
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आए।
0: तो ये गाना आपके लिए, और कसम देने की जरूरत नहीं है, मैं कल लौट आऊंगी। फेसबुक और इंस्टा पे मुझे ढूंढ सकते हो, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। तो कल मिलते हैं फिर से, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

끄짝끄짝 좀 잡고.

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, मिर्ची।